دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: और अगर तुम पर खुदा का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो चंद अशखास के सिवा सब शैतान के पैरों हो जाते।
2: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله

FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर

0: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज हम बना रहे हैं टीचर्स डे और होपफुली आप अपने टीचर्स को याद रखेंगे और मेरे तो बहुत सारे फेवरेट टीचर्स हैं और अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी भी उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना सिखाया। जो भी टीचर्स आपसे प्यार से बात करते हैं आपको हमेशा याद रहते हैं, एनीवेज आपका ख्याल करते हैं स्कूल में। कितने सारे टीचर्स होते हैं लेकिन आपको बस दो तीन टीचर्स ही याद रहते हैं जो आपको आपका ख्याल करते हैं, आपको अच्छे मार्क्स भी देते हैं इसलिए ओके। और तो हमें आप बताएं, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे कि आपका सबसे फेवरेट टीचर उस्ताद कौन सा है। और मैं अभी बच्चों के लिए प्ले कर रही हूँ जो मेरा फेवरेट गाना है, जो बच्चे भी मैं सुन रहे हैं तो मुझे पता है कि ये गाना सुन के ना आपने तो एनर्जेटिक हो ही जाना है और गाड़ी के अंदर डांस करना है क्योंकि मैं तो जा रही हूँ उस गाने पर डांस करने के लिए। तो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग Here it is, the Gummy Bear.
1: Gummy Bear album in stores on November 13th with lots of music, videos, and extras.

0: Deine Bank ist da. Muft Fund Transfer, Muft Checkbook, Muft Online Banking und behtreen Mobile App die Sahulat Kisa. HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी फिंगर रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी फिंगर रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL।
2: This program is brought to you by
3: Sir Sabs Nitro Force को लगा और जीत ताजा
2: and
4: Tabal Family Mixture लाएं उम्राह पर जाएं
0: and HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL।

0: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
1: FM 247 365 FM 247 365

जी हाँ, फिर हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। हमें मैसेज करें और बताएं कि आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन था। आरजे समीहा के इंस्टाग्राम पे @RJ समीहा नाम है मेरा SAMEEHA और आके आरजे लगा दें, देन यू कैन फाइंड मी। और हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजाम बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365 You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samina.

0: FM 100 traffic update.
1: पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख हजार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक मंजिल पंप से फैदाबाद और मरीज सिटी की जानब आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, जबकि जौहर मोड़ से वो ट्रैफिक जो जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ और वहां से इस वक्त मिलेनियम मॉल और डिग रोड खैरा फैसल की जानब आ रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का कुछ दबाव है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100। It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. 100 FM. HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL। 100 FM। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account। This program is brought to you by
2: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taaja
0: and
3: Tabal Family Mixture line Umrah par jaye
0: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL।

0: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ है।

0: जी आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और हम भी आपके साथ साथ हैं। आज हम बात ये कर रहे हैं वर्ल्ड टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे हम मना रहे हैं। तो जो टीचर्स जिन्होंने आपकी जिंदगी में एक अहम रोल अदा किया हो, भले वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, ट्यूशंस में हो, तो आप हमें जरूर जरूर बताएं। वसी अहमद सिद्दीकी का मैसेज आ चुका है हमारे पास। वसी अहमद सिद्दीकी, कैसे हैं आप? और वो कह रहे हैं कि अ गुड टीचर इज अ फैसिलिटेटर, गाइड एंड अ ब्रिज बिटवीन नॉलेज एंड द लर्नर। ही इज द वन हु कैन अवेकन क्यूरियोसिटी इन अ चाइल्ड हु हैज स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड हु डाउट्स हिमसेल्फ एंड एम्बिशन इन अ चाइल्ड हु कैन नॉट इमेजिन अ डिफरेंट फ्यूचर। ब्यूटिफुल मैसेज। इसके बारे में मजीद बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। आप लोग मुझे मैसेज करें आज ही समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज ही समिया इंस्टाग्राम पे।
1: It's 9 a.m. The Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.

0: मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फीड मकान, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
2: 100 FM। अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा,
4: एंड
5: बाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं,
0: एंड HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।

0: फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: जानी नो परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: अटल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उम्र लिखे 02131182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। अटल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं।
3: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: This program is brought to you by
5: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taja
4: and Tabal Family Mixture line umrah par jaye
3: and HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL and

0: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: FM 100 Like us on facebook.com/fm247365 FM 247-365

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram.
0: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: Tapal family mixture ke saath har safar khas. Umrah likhe 02131118275 par WhatsApp karein. Pack ke andar maujood code bataein aur lucky draw mein shamil ho jaein. Tapal family mixture laein, umrah par jaein.
0: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab wahan
4: Like us on facebook.com/fm247365. FM 247 365.

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab, wahan HBO.
2: 100 FM.
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: FM 247-365

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 247 365.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually hungi aapse khoob sari baatein share karenge, kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. जानेंगे आपके हाल हवाल, कैसा गुजरा आपका छुट्टी का दिन, कैसा गुजर रहा है आपका आज का दिन, और क्या है कोई नई ताजी या फिर कोई नई खबरें, तो इस पर भी होगी बात, बल्कि होंगी आपसे खूब सारी बातें. लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हो जाए. अब लोग सोच रहे होंगे कि जी मजीद आगाज क्या बाकी है, तो प्रोग्राम का बाकायदगी से जो आगाज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं, बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो चलें जी, लेट्स बिगिन विद एन एनर्जेटिक ट्रैक.

यस एवरीबॉडी, सो प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज भी हो गया है। आपको तरीका कार भी बता दिया है कि 3636 के जरिए आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं और अपने हाल हवाल बता सकते हैं कि भाई आप सब कैसे हैं, क्या हाल है। और आज है 5th ऑफ अक्टूबर, सो हैप्पी बर्थडे अगर आज किसी भी जाने वाले की बर्थडे है, सो आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो आज एक और खास दिन मनाया जाता है और ये वो खास दिन है जिसके बारे में सभी जानते हैं। तो भाई आज वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स का आलमी दिन आज के रोज मनाया जाता है। हर साल ये दिन जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा होता है। इसमें स्कूल्स में तो दीगर जो है वो एक एप्रिसिएशन सेरेमनीज होती हैं जहां पर टीचर्स को जो है वो रिवॉर्ड्स दिए जा रहे होते हैं। उसी के साथ साथ इस दिन जो है ना वो बच्चों की जिम्मेदारी भी ये हो जाती है कि वो अपने कुछ टीचर्स की पैरोडी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है वो टीचर्स को रेस्ट देकर वो काम ये खुद कर रहे होते हैं। तो इसमें भी एक बड़ा मजा आता है कि जी वर्ल्ड टीचर्स डे पर जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो टीचर्स का रोल अदा कर रहे होते हैं, उनकी पैरोडी कर उनकी एक्ट कर या क्लासेस को संभालना है ना। यूज टू डू दिस, मैंने भी बहुत दफा ऐसा किया है टीचर्स की पैरोडी कर जो है वो क्लासेस को संभालना एंड ऑल। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो ये मजे मजे के दिन होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सबसे खास दिन ये होता है कि आज के दिन अपने असातिज़ा को याद रखना, उनको अप्रिशिएट करना, उनके शुक्रगुजार होना कि जी उन्होंने आपको इतना कुछ सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। और वाकई में भाई टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हम सबकी लाइफ में, बिकॉज मैं तो ये कहती हूं कि अगर हम शुरू से शुरू करें ना तो स्पेशली मॉन्टेसरी और उसके टाइम पीरियड में, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है। मैं अब भी रियलाइज करती हूं, बल्कि बहुत ज्यादा हैरान होती हूं देख के कि टीचर जो है वो बच्चे को पेन पेंसिल पकड़ना सिखाती है और फिर लिखना सिखाती है, एंड दैट इज सो डिफिकल्ट। मतलब ये जो मेन एक चीज होती है ना, ये वाकई में आपके टीचर्स ही कर सकती हैं, आपको लिखाना पढ़ाना, आपको लिखना सिखाना। सो ऑब्वियसली सल्यूट गोज टू द टीचर्स, वो टीचर्स जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती आ रही हैं। टीचर्स हमारे साथ हर पल हरदम खड़े होते हैं। इनिशियल स्टेज पे तो ऐसा होता है कि जी मॉन्टेसरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, तो वहां पर टीचर सपोर्ट करते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जब आप एक वर्किंग रूटीन में आते हैं, वर्किंग लाइफ में आते हैं, तो वहां पर भी आपको सपोर्ट करने के लिए जो है वो आपके टीचर्स मौजूद होते हैं, जो कि आपके बॉसेस होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, जो आपको काम सिखा रहे होते हैं। तो टीचर्स का किरदार हर वक्त हमारी जिंदगी में हमेशा रहता है, लेकिन जिसने भी आपको कुछ सिखाया है उसके शुक्रगुजार जरूर हों। और आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, सो सल्यूट गोज टू ऑल टीचर्स। तो आज वर्ल्ड टीचर डे पर आप लोग इस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी पसंदीदा टीचर का नाम भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना कुछ यूं है, यानी कि 3636 पर हमें मैसेज करना है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के एच आई लिखें, स्पेस दें, मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। और आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और लुक वर्ल्ड का भी मैसेज आ चुका है जिसे हम शामिल करेंगे। बिफोर दिस वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर ट्रैक, तो ट्रैक की जानिब चलते हैं, फिर वापस आकर आपके मैसेजेस को भी करेंगे शामिल। सो आज है वर्ल्ड टीचर डे, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीचर्स फॉर सपोर्टिंग अस अ लॉट।

0: यस जी, सो लोकल भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माय लवली लिस्नर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? कहती हैं कहाँ गायब थी आप? यार मैं कहीं गायब नहीं थी, मैं यहीं थी अपने शहर कराची में, और मैं कहीं नहीं गई थी, तो मैं तो यहीं थी। और कहाँ थी मैं वैसे, मैं कहाँ थी, मैं कहीं नहीं थी, मैं घर पे थी और यहीं थी, और बस सैटरडे को छुट्टी कर ली थी हमने, बाकी यहीं पर हम मौजूद हैं। थोड़ा सा हमने कहा चलो रेस्ट रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वैसे तो हम यही हैं। और आज वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो हमने कहा कि हम भी आपसे जानते हैं कि भाई आपका जो टीचर है वो कौन था, जिसने आपको, जिसको आप कभी नहीं भूलते हो। और अच्छा, हमारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स आती हैं जाती हैं हर क्लास में, हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट के लिए हमें डिफरेंट टीचर्स मिलती हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोई एक टीचर ऐसी होती है जो हमें हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो हमें बहुत अप्रिशिएट करती हैं काम सिखाने में, काम करने में, और हमेशा याद रहता है कि जी उनके साथ में आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे टीचर्स भी आपके मौजूद होते हैं, और जिनके साथ आपने जितना भी वक्त गुजारा होता है वो बहुत अच्छा गुजरता है। और जैसे कि मैंने कहा कि भाई आज टीचर्स डे है, तो टीचर के साथ साथ आपके और भी, यानी कि स्कूल फेज, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के अलावा भी बाद में भी आपको टीचर्स मिलते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं, तो उनको आज के दिन जरूर याद रखें और जरूर विश करें कि भाई आज जो है वो आपका दिन है, तो आज खास तौर पर आपको याद किया जा रहा है, क्योंकि भाई एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोगों की अक्सर औकात नहीं करते, लेकिन मैं ही कहती हूँ कि जी जरूर एप्रिशिएट क्या करें लोगों को, ये बहुत एक जरूरी होता है। आलूपल कहती हैं मिस शमसा नेम है मेरी टीचर, ओके, कहती हैं बहुत स्वीट थी, कभी कभी गुस्सा आता, कभी गुस्सा आता ही नहीं था उनको। अरे वाह, वाकई में ऐसी टीचर्स बहुत आपके लिए ब्लेसिंग होती हैं, जो जिनको कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे याद है मेरी एक क्लास सिक्स में, यस आई रिमेम्बर, मिस शाजिया थी, और मैंने ना एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था क्लास सिक्स में, तो जब मैंने शुरू में एडमिशन लिया तो मतलब ऑब्वियसली सारे टीचर्स स्टूडेंट्स सब न्यू होते थे, पर मेरी नेचर बहुत फ्रेंडली थी एंड ऑल दो, तो टीचर ना मुझसे कभी सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब बिना वजह में, या नहीं तुमने ये नहीं, अच्छा मैं भी परेशान कि क्या है, वो खुशी नहीं हो रही है एंड ऑल दो, फिर अचानक से पता नहीं उन्हें क्या हुआ, फिर वो ऐसे उन्होंने टर्न लिया कि आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं शाजिया एक मेरी इतनी बेस्ट टीचर फिर बनी। मतलब शुरू में उनका काफी जो था वो रूड बिहेवियर था मेरे साथ, क्यों था आई डोंट नो, बट उसके कुछ ही महीनों बाद वो इतनी बेस्ट टीचर टर्न आउट हुई, और उन्हें मेरे अंदर का टैलेंट नजर आया, उन्होंने चीजों को इतना ज्यादा वैल्यू करा, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं शाजिया एक बहुत अच्छी टीचर थी, क्योंकि होता है कभी कभी टीचर्स का शायद अपना मूड अच्छा नहीं होता है, क्या होता है, दैट इज वाई, लेकिन फिर वो मेरी बेस्ट टीचर्स में से एक टीचर बनी, क्योंकि बहुत कुछ उनसे सीखा, बहुत वो अप्रिशिएट करती थी, चीजों को बहुत सराहती थी, और अच्छी टीचर्स सबसे ज्यादा आपको वो लगती हैं जो आपको बहुत अप्रिशिएट करती हैं, आपकी चीजों को वैल्यू करती हैं, आपका जो भी काम होता है उसे पसंद करती हैं, आपको सिखाती हैं। बेसिकली ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपको एफर्ट कर रहे हैं तो वो टीचर जो है ना आपके एफर्ट को सराहे। तो आई स्टिल रिमेम्बर, और मैं शाजिया स्टिल इन कॉन्टेक्ट भी है मेरे, और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूं कि उनके साथ गुजारा हुआ, बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा, बहुत कुछ उनके साथ सीखा, सो ग्रेट टाइम विद हर, एंड मे गॉड ब्लेस हर अ लॉट एंड लॉट। तो भाई अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ अच्छा अच्छा हमारा वक्त गुजरा है, और आज हम उसी तजर्बे को आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं कि जी हाँ, आपकी बेस्ट टीचर और उनके साथ गुजारा हुआ टाइम भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है। तो आपकी पसंदीदा टीचर कौन सी थी हमें जरूर बताएं, इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस, तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
1: facebook.com/fm247365 fm247365

के जी, सो बातें हम कर रहे थे टीचर्स के हवाले से, उसी के साथ साथ हमने ट्रैक शामिल किया सज्जाद अली का। और आज मजे की बात पता है क्या, ये ट्रैक ऐसा नहीं है कि सुना हुआ नहीं है, और आज मैंने बड़ा तफसील से सुना था, मुझे बड़ा मजा आया इसे सुनने के बाद कि भाई याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। सो दिस इज वेरी नाइस, आई मीन वेरी नाइस इन दिस सेंस कि आज ना मैंने इस ट्रैक को बड़ी तफसील से सुना तो मुझे बड़ा मजा आया, और मैंने कहा कि भाई बहुत सारे शायद हमारे लिसनर्स की सिचुएशन से ये ट्रैक जो है वो रिलेट करता है, तो शायद कुछ लिसनर्स ने इसे बहुत एंजॉय किया होगा और याद किया होगा कि जी याद तो आती होगी, दिल झुकाती होगी। तो क्या कोई मेरा ऐसा लिसनर है जो इस ट्रैक के साथ आज बहुत रिलेट करा है, जिसने इसकी फीलिंग्स को, तो मुझे बड़ा मजा आया आज, मैंने इस ट्रैक को बड़ा एंजॉय किया क्योंकि मैंने सुना इसको मजे से आज पहले पूरी दफा के। तो मजे का भाई, सज्जाद अली के गाने वैसे बड़े जबरदस्त किस्म के गाने हैं, और मैंने इसीलिए डिसाइड किया है अभी आज बैठे बैठे इस गाने को सुनते हुए कि भाई एक दिन ना हम सिर्फ सज्जाद अली के गाने चलाएंगे, भले वो प्रोग्राम के सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में, लेकिन हम ना सिर्फ सज्जाद अली के गानों को शामिल करेंगे क्योंकि एक से बढ़कर एक है मजेदार से ट्रैक्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जी आज ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक दिन सज्जाद अली के गाने जो हैं वो चलाएंगे और आपको भी सुनाएंगे, आई मीन ऑब्वियसली आपको भी सुनाएंगे और हम खुद भी सुनेंगे। उसी के साथ साथ रशीद खान का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो कैसी हैं आप, वालेकुम अस्सलाम, हम हैं बिल्कुल ठीक जी, कहते हैं आई एम गुड, ऑफिस से सुन रहे हैं, कह रहे हैं दिन भी अच्छा गुजर रहा है, छुट्टी का दिन स्पीड से ही गुजर गया, नींद पूरी की। हाँ ये तो है, छुट्टी का दिन स्पीड से गुजर जाता है, कुछ ज्यादा स्पीड से गुजर जाता है, और मैंने तो नींद पूरी करी भी लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मतलब ऐसे ही गुजरा था कि दो दिन छुट्टी की थी मेरी इस दफा, बट सेटिस्फैक्ट्री वाले दिन नहीं गुजरे मेरे क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे जो मैंने नहीं किए क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, और बस ऐसे तैसे करके मेरे दो दिन गुजर गए, तो ये थोड़ा मुझे रिग्रेट रहा कि इस दफा दो दिन की छुट्टी को मैं वैसे अवेल नहीं कर पाई जैसे मैंने प्लान किया था। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। कहते हैं कि जी ओके, बिरयानी है इनके लंच में, ओहो, कहते हैं वो भी मसाले वाली, मुझे मसाले वाली बिरयानी तो आप जानते ही हैं सारे लिसनर्स की मेरी कितनी फेवरेट है, और पता है मजे की बात क्या है, मैंने बहुत टाइम से मसाले वाली बिरयानी खाई भी नहीं है, तो अच्छी जगह की मसाले वाली बिरयानी की एक तलब होने लगी रशीद खान आपका लंच सुन के। कहते हैं आपके लंच में क्या है, मेरे लंच में आज आलू टमाटर है, मटर नहीं है उसमें, आलू टमाटर है, मूंग मसूर की दाल है, साथ में चावल है, तो आज मेरे लंच में ये है। और कहते हैं आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, सर इलियास माई बेस्ट टीचर, ओके जी, कहते हैं पॉसिबल है तो ट्रैक लगा दीजिएगा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। ठीक है जी, जरूर हम इसे करेंगे शामिल, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, और फिर इंतजार के बाद हम आपके पसंद के ट्रैक को शामिल करेंगे। अच्छा भाई, लुक वर्ल्ड भी अभी आपने लास्ट पता नहीं कौन सा दिन कहा था मुझसे कि मैंने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, आपने उसे शामिल नहीं किया था, तो कौन सा ट्रैक था भाई, हमें मिला नहीं था, लेकिन अगर आपको बताना है तो आप बता दें, अभी आपके पास वक्त और मौका मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि जी उसे हम जो है वो शामिल कर लें। जब तक हम चलते हैं ट्रैक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद, सो एंजॉय।

ओके सो रशीद खान ने कहा था कि जी इस ट्रैक को शामिल कर लें, हमने कहा चलो जी कर लेते हैं शामिल और आप इंजॉय करें। इसी के साथ साथ मजीद मैसेजेस भी हमारे पास आ चुके हैं, लुक वर्ल्ड के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं, तो चलो जी उसे शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या कह रही हैं। तो कहती हैं कि मेरी इंग्लिश को टीचर थी, अच्छा मेरी इंग्लिश की टीचर थी मिस फरा नदीम, वो भी बहुत अच्छी थी, अब वो ड्रामे में आती हैं, जबरदस्त हो गया है जी। कहती हैं और मैथ्स की टीचर मिस इस्मत बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जितना खतरनाक मैथ्स होता था उससे भी ज्यादा। ये होता है वाकई में, आप पता कुछ टीचर्स से आप इतना ज्यादा डरते हैं कि उसकी वजह से आप उस सब्जेक्ट को लेकर ना खौफ ज्यादा हो जाते हैं कि पता नहीं आप जो है वो कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाकई में ना वो एक टीचर फेयर भी होता है जो आपको बहुत ज्यादा होता है और आप अक्सर होगा तो उस वजह से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि आपसे ना डर के मारे वो काम नहीं हो रहा होता। और मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, मुझे भी कुछ लोगों का ऐसा फेयर हो जाता है, मतलब डर लग जाता है कि फिर ना मैं डरी रहती हूँ कुछ भी हो, क्योंकि वो शुरू में जो एक टाइम पीरियड होता है, चाहे वो एक फेस होता है किसी के साथ भी, आप जब कुछ सीख रहे होते हैं कोई आपको सिखा रहा होता है समझा रहा होता है, अच्छा कुछ लोग ना उसी टाइम पर अपना ऐसा डर बिठा देते हैं कि वो फिर बेचारे वैसे हो या नहीं हो, लेकिन ना एक डर बैठा रहता है। सो आई एग्री विद दिस कि ये सिचुएशन बहुत दफा होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि जी आप जो है वो डर में आ जाते हैं। सो ये भी एक एक्चुअल सिचुएशन है जिसके साथ हम सब चल रहे होते हैं। खैर जी, सो जल्दी से आप लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपने हाल अहवाल बताया है, आज टीचर्स डे है तो अपनी टीचर्स के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं, उसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होती हैं। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर चाय लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। साथ ही साथ आप लोग आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे स्टेटस हो चुका है अपडेट, तो आप लोग हमें वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर भी। यहां पर से मुरादी के जी हम आपके साथ मौजूद हैं एफएम 100 पाकिस्तान पे, इस वक्त आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। सो गाइस स्टे कनेक्टेड, चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में, जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाकिस्तान में बढ़ते फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेजते। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है, जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखिए, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें: सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें, नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें, व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें, ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रातों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम रातों को पैगाम भेजें: मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉल करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप پے ویریفیکیشن یا ایک چھ ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے کہ امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 247 365 FM 247 365

Yes, my friends, so I am back और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान. तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे 3636 पे मैसेज कर सकते हैं. सो लुकपल कहती हैं कि जी आज लंच में कीमा करेले हैं. ओके, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस. ये मजे का लंच लुकपल खा रही हैं, रशीद खान मसाले वाली बिरयानी खा रहे हैं और आज हमारे लिसनर्स ने जल्दी से हमें अपना लंच बता दिया कि किसके लंच में क्या मौजूद है. बाकी लोगों के भी हम लंच का इंतजार कर रहे हैं, तो बताइएगा. वैसे हम इसका एक खसूसी सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले भी हमें बताना चाह रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन यू, आप जल्दी से हमें बता सकते हैं क्योंकि हम करेंगे आपके मैसेज का इंतजार. तो भाई आज जो है वो वर्ल्ड टीचर्स डे तो मनाया जा रहा है और 5 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है तो सब जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कौन से दिन मनाए जा रहे हैं उस पर भी नजर डालते हैं. आज है नेशनल डू समथिंग नाइस डे. ओके, यानी कि आज एक ऐसा दिन मनाया जाता है कि आप कुछ अच्छा करें, इसका दिन मनाया जाता है. और शायद आप रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं और कभी कभी आपका दिल चाह रहा होता है कि आप कुछ अच्छा करें, किसी के काम आने के लिए, किसी के लिए मददगार साबित होने के लिए. और अगर आपकी ये सोच है तो इस सोच को हमेशा जिंदा रखें और हमेशा इस तरह की कोशिश करें कि आप जो हैं वो किसी के काम आए. जरूरी नहीं है कि कोई आपसे मदद मांगे तो ही आप उसकी मदद करें, कभी कभी बिन कहे भी आप जो है किसी की मदद किया करें. और ये ना सोचा करें कि यार मैंने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन ना वो खुश नहीं हुआ या उसने कुछ नहीं कहा, तो जी वो कुछ कहे या ना कहे आपका खुदा ताला सब देख रहा है. और अल्लाह ताला जब सब देख रहा है तो फिर क्या टेंशन कि उसने कुछ कहा या नहीं कहा. आप अपने तौर पर हर अच्छा काम जरूर किया कीजिए, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया कीजिए और ये ना सोचें कि वो खुश हुआ कि नहीं हुआ. खुश करना बंदों को नहीं जरूरी, खुश करना है खुदा को जरूरी. तो अपने अल्लाह ताला को हमेशा खुश रखें, लोगों की मदद करें और लोगों के काम आने वाली नेचर हमेशा बरकरार रखें. चलते हैं जी एक और ट्रैक की जाने और आते हैं वापस इसके बाद, तो मजीद बातें भी होंगी, तो जाना आपने कहीं नहीं क्योंकि हम आपके साथ मौजूद हैं 2 बजे तक. तो अभी तो एक भी नहीं बचा है, तो बहुत सारी बातें बाकी है मेरे दोस्तों. सो स्टे कनेक्टेड, आते हैं वापस इस ओवरस्टे के बाद.

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365 You're in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

ओके जी, सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत भी हो गई कायम, यानी कि एक अदर ट्रैक हमने कर दिया है आपको डेडिकेट. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम आपसे रोजाना की बुनियाद पर पूछते हैं कि जी आपके लंच में क्या है, तो क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है. भाई लुक वर्ल्ड और रशीद खान ने अपना लंच बता दिया है. रशीद खान तो मसाले वाली बिरयानी खा रहे हैं, लुक वर्ल्ड जो है वो करेले कीमा खा रही हैं. और इसी के साथ साथ जरी नूर का भी मैसेज आ चुका है, कहती हैं सलाम कैसी हैं, बहुत दुआ आपके लिए, अभी लाइट आई है. वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बहुत सारी दुआओं के लिए और बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी. तो भाई लंच में क्या क्या पक रहा है लोगों के, हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस वक्त हम आपके लंच जाने के लिए कर रहे होते हैं बेसब्री से इंतजार, बिकॉज ये एक्चुअली में लंच टाइम है. और इस वक्त जो है वो हर जानिब एक अफरा तफरी मची होती है. किसी को ये होता है कि जी काम जो है वो जल्दी से खत्म हो ताकि हम सुकून से अपना लंच करें, किसी को बहुत सारी भूख लग रही होती है, कोई जो है वो मीटिंग से बड़ा परेशान होता है कि ये खत्म हो, किसी को गैस का इंतजार है और किसी को अपने मजेदार खाने के गर्म होने का इंतजार है. तो हर जानिब हर तरफ एक अलग ही किस्म की अफरा तफरी मची हुई है. तो आप लोगों के लंच में क्या है हमें जरूर बताएं. जरीनूर कहती हैं कि आज खाने में चिकन कढ़ाई और मिक्स सब्जी है. वाओ, मिक्स सब्जी इज द बेस्ट सब्जी. मतलब सब्जियां वैसे अलग अलग भी बनती हैं, लेकिन जो मजा मिक्स सब्जी को एक साथ खाने में आता है ना, वो मुझे लगता है कि वो आपको अलग अलग सब्जियां वो मजा नहीं दे रही होती, क्योंकि मिक्स सब्जी में ना एक बड़ा मजे का फ्लेवर आ रहा होता है, जिसे आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर रहे होते हैं और चावल के साथ भी इंजॉय कर रहे होते हैं. आप दोनों ऑप्शन उसे अवेल कर सकते हैं, सो मजा आता है. तो ठीक है भाई, हमारे कुछ लिसनर्स ने अपना लंच बता दिया है, लेकिन कुछ का जानना बाकी है. लुक वर्ल्ड का मैसेज भी हमारे पास आया, हम शामिल करते हैं. कहती हैं मैंने आपसे ये ट्रैक कहा था राहत फतेह अली खान का, आपको डेडिकेट करना है, प्लीज हो सके तो कर दीजिएगा. अच्छा लुक वर्ल्ड ये ट्रैक हम शामिल नहीं कर सकते, आप कोई और ट्रैक कह दें, बिकॉज हम इंडियन ट्रैक्स को प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, तो कोई और ट्रैक है तो आप हमें बता दें. कहती हैं मैं आपको कभी बताया नहीं, अब मेरी दादी का नाम भी फातिमा है. अरे वाह, जबरदस्त हो गया भाई, वाह भाई वाह, दादी का नाम भी फातिमा है और मेरा नाम भी फातिमा है, सो व्हाट अ कोइंसिडेंस. ओके जी, ऑल राइट, तो आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं हम कि आपके लंच में क्या है, जल्दी जल्दी हमें बताएं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बाकी है मेरे दोस्तों जो आपके साथ करेंगे. और उसी के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक अदर ट्रैक की जानेब चलें, और ऑब्वियसली चलते हैं भाई ट्रैक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

ओके जी, सो आप लोग एंजॉय कर रहे थे इस ट्रैक को. लुपल कहती है थैंक यू सो वेरी मच लवली आर्चे, यू वेलकम माय लवली लिस्नर. सो आपने एंजॉय किया, बेस्ट हो गया भाई. इसमें पश्तो भी है और उर्दू भी है. यस, दोनों हमने एंजॉय किया है इस ट्रैक के साथ साथ. एंड यस, एंड हमारे पास और किसका मसला है. जरीनूर कहती है कि जब से गैस और लाइट की टाइमिंग चेंज हुई है, हम तो मशीन बन गए हैं. जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ जाते हैं. अभी लाइट आई है और अभी गैस आई, चली ना जाए. बिल्कुल सही कह रही है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम मशीन बन चुके हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हम अपनी लाइफ को ना अब खुद से प्लान नहीं कर पा रहे हैं. अब हम गैस के आगे इतने मोहताज हो चुके हैं ना कि हमें उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को प्लान करना पड़ता है. बल्कि हम जो प्लान करते हैं हम उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ गैस. हमें टेंशन रहती है कि भाई गैस ना चली जाए, इस वक्त गैस आ रही है, ये कर लें वो कर लें. अल्लाह, एक वाकई में हैक्टिक हो चुका है क्योंकि इतनी मुश्किलात का हम लोग जो है वो आजकल शिकार हो रहे हैं ना गैस की वजह से कि अल्लाह, वाकई में कल ही मतलब कल शायद हम लोग इस मौजू पर बात कर रहे थे कि कहीं आना जाना मिलना मिलाना अब हर चीज जो है ना वो गैस पर डिपेंड करती है. तो इसकी अवेलेबिलिटी देखकर आप जो है वो अपनी चीजों को प्लान कर रहे होते हैं बिकॉज अगर ये चली गई तो आपको पता है कि आपको बड़े मसलों का शिकार होना पड़ेगा. सर ये तो है, ये है कि ये वाला बर्डन जो है वो खवातीन पर आजकल बहुत ही ज्यादा है. और अभी तो सर्दियां नहीं आई हैं तो हम इस मसले को फेस करें. जैसे ही सर्दियां आती हैं तो आपको पता है एक अलग किस्म का ट्रॉमा जो है वो हम सबके सर पर गिरता है क्योंकि तब तो गैस मुकम्मल तौर पर छुट्टियां मना रही होती है. एक्चुअली गैस जो है वो इतना एंजॉय कर रही होती है इन छुट्टियों को क्योंकि सर्दियों में आपको इत्तफाकन कभी कभी गैस मिल जाती है. सो एक ये बड़ा ही टॉर्चरस टाइम होता है. और सर्दियां कब आएंगी ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि कराची वालों अगला पूरा हफ्ता, अगले से मुराद ये कि अभी जो हफ्ता शुरू हुआ है यानी कि पीर से लेकर इतवार तक कराची पर आसमान पर बादलों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा. सुबह और रात के वक्त चंद एक इलाकों में हल्की फुहार या बूंदाबांदी भी हो सकती है क्योंकि शायद आपको याद हो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 5 अक्टूबर से शहर कराची का मौसम अच्छा हो जाएगा, अबर आलूद भी हो जाएगा. सो यस, ये है अपडेट्स कराची वालों. अब धूप तो हल्की फुल्की आपको मिल सकती है लेकिन ज्यादा नहीं क्योंकि बादलों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा. तो इसके जेर असर आप लोग अक्टूबर के महीने में एक अच्छे से मौसम को एंजॉय कर सकते हैं जिसको हम आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और इसी के साथ साथ आपको दर्जा हरारत भी बताते हैं कि इस वक्त कराची का दर्जा हरारत कितना है. तो इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 31 है जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 33 है. एंड दैट्स ग्रेट. तो ये है जी मौसम की ताज़तरीन सूरत हाल. इसी के साथ साथ चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: This program is brought to you by
1: Step School Say Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाए।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा न खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. कॉल नाउ एट 03111117837.
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
4: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.

0: 247-365. FM 247-365.
1: Across the nation, there is only 100 FM.

जी जनाब, और आज मंडे यानी पीर का दिन आपका और हमारा शदीद मसरूफ दिन, और इस मसरूफियत में बहुत सारे मामलात होते हैं जिंदगी में, भागना दौड़ना और हर चीज रूटीन में लेकर आना। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, आज वेदर भी बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा अपनी हेल्थ को और अपनी चीजों को बेहतर रखने की कोशिश करें। एज ऑलवेज आई एम सेइंग कि भाई जो कनेक्टेड वेदर होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो सर्दियां जो हैं वो क्या ही आएंगी कराची में, लेकिन फिर भी जो कुदरत का कानून है आपने और मैंने वो तो देखना ही देखना है, और वो इस तरह से देखना है कि हम कहाँ तक किस चीज को साथ लेके चल सकते हैं, हम कहाँ तक किस चीज को बहुत हद तक एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉयमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपनी रोजमर्रा मामलात का ख्याल रखना है, और आपने देखना है कि क्या चीज आप ऐसी खाएं जो कि आप मजीद अपने दिन को अपने मामलों को बेहतर कर सकें। एनर्जी जरूरी है, लेकिन आज कल के बढ़ते हुए हालात और मामलात में आप यकीन करें जो कभी भी नहीं हुआ था या होता था, नॉर्मल हमारी डाइट से, नॉर्मल हमारे रूटीन से, नॉर्मल हमारे मामलों से, वो चीजें जो हैं अब हो रही होती हैं। यानी कि खाना पीना ऐसा हो रहा होता है कि हम हमें पता भी नहीं होता और वो हमें नुकसान कर जाता है। ये मैं स्पेसिफिकली आज बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले दिनों भी इस पैटर्न से गुजरी हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी इस चीज के लिए आगाही दी जाए। और आज वो इतना मेजर इशू मैं आपसे डिस्कस करूंगी, कोशिश करूंगी, क्योंकि यकीनन जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो हेल्थ के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनको ये बात पता होगी, और हमें जो हम एक नॉर्मल पर्सन होते हैं जो आम जिंदगी की भागदौड़ में लगे हुए होते हैं, उन्हें ये चीजें अंदाजा भी नहीं होता, पता भी नहीं होती, और शायद हम पता करना चाह भी नहीं रहे होते हैं। तो जनाब, इसी तरह आप जिंदगी को एंजॉय करें, लेकिन बराए मेहरबानी आप एंजॉयमेंट के साथ साथ वो सारी चीजों का ख्याल रखें जो जरूरी हैं, और जरूरी ये है कि आपने अपना बहुत बहुत बहुत देखे। प्याज एक ऐसी चीज है, यानी अनियन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पता है कि एसिड्स होते हैं, अब वो एसिड जो है अगर आपकी लाइफ में या आपके खाने पीने में या आपके मामलों में जरा सा भी कुछ इस तरह का मामला कर देना, तो वो बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, माउथ इन्फेक्शन होता है, स्टमक इन्फेक्शन होता है। ये चीज प्लीज जरा सी कंसीडर करें ताकि आपको पता हो कि भाई आपने किस वक्त क्या खाना है और किस वक्त किस तरह से खाना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
3: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाते।

0: is facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
0: Across the nation, there is only 100 FM.

0: your location for maximum music.
1: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
4: 100 FM।
5: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: सर सब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
8: एंड कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL
9: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
11: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
14: Across the nation, there is only 100 FM.
15: से बेखबर जो कहना था कहने दे, आंसू ये बहने दे, यार बोले बेखबर, बोल खोल दे, हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे, वक्त पूरा ना हो बेसबर, मेरे लफ्ज़ तुझ पे

लगा कहानी मेरी सिर्फ दर्द भरी हासिल मुझे बर्तरी होने लगी हर बड़ी खुद की कमाई पैनी गड़ी वो भी बर्बरी अभी मजबूर नहीं लेकिन चली लग बड़ी आके मेरे पैर पड़ी जिंदगी थी सैर बड़ी सीखे हम गिर के चाहिए सबके खैर बड़ी गहरे समंदर हम लेके चले।

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: This program is brought to you by
4: Sarsab Nitro Force ko laga aur jeet taja
1: and
5: Kabal Family Mixture line Umrah par jaye
2: and HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

facebook.com/fm247365. FM247365. Across the nation, there is only 100 FM.

थोड़ी तो कमी कर, खिले ना क्यों यहाँ अंगों गुलाब, फिर वही बहार की कमी बस, किस्मत हमारे ही हाथ में है, उसके इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब कर दुखे, भरेंगे दोस्त वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त मुकम

0: your location for maximum music. It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to
0: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का. एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें. मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें. तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
5: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक के टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: अभी बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना।
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
4: एंड
3: कमाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेशे नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
7: FM 24/7 365. Across the nation, there is only 100 FM.

सुन मुझको पास आके बैठ फिर चेक कर लो पूरी है तो रेस एटीट्यूड इन द रेस पर रेस को ही जीते जब स्टेडी एंड स्लो बैम बैम दिल धड़के डर डर के करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ।

男人回来。

0: location for maximum music.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: HBO Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBO Freedom Account, jahan khwab, wahan HBO.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO.
1: This program is brought to you by
4: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taja
1: and
5: Tabal Family Mixture line Umrah par jaye
1: and
2: HBO Freedom Account, jahan khwab wahan HBO.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: खैर तो है, जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: ये बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
5: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
8: एंड बाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
9: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

कोई समझे या ना समझे, आई समझो फाइट वेरी वेल वेरी वे, माय दिल इज नॉट पागल एट ऑल, दो इट टेक्स मी ऑल्सो समटाइम्स यू नो फॉर ग्रांटेड. एनी वे थैंक यू सो मच, यू आर ड्राइविंग ऑन स्ट्रीट्स ऑफ कराची, प्लीज ड्राइव वेरी केयरफुली, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, एंड ऑफकोर्स मेक श्योर यू हैव योर सीट बेल्ट ऑन, यू इन्वेस्टेड इन दैट गाड़ी. Safety first, people. Going to be coming into the track by Momina and of course his mother, so stay tuned to the airways. Another good track. Going to be lined up back to back. After this raggedy one, one more for the road.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This program was brought to you by Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet taja and Tabal Family Mixture lae umrah par jaye and HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. And Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मर्तबा हासिल किया. जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात. पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक.
0: 100 FM. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक, मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
0: एंड
4: AGS ट्यूबुलर बैटरी है तो दिल को है आराम.
0: facebook.com/fm247365
5: fm247365.
6: Let's celebrate
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
5: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: Listeners tell us about FM 100.
9: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
10: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
11: Number one music station.

0: FM 265. FM 247 365.
1: DJ FM 100 100.

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram. This program was brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil to hai aaram. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम मेरा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब क्या हाल है और कैसी तबीयत है उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे ठीक ठाक होंगे और फिटफाट होंगे दिन है आज मंडे और मंडे वाले दिन मैं आपको सुनाता हूँ जरा पुराने गाने ओल्ड इज गोल्ड जनाब और मैसेजेस आप लोग मुझे करते हैं कि एच आर स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर जनाब और जो ड्राइव कर रहे हैं उनसे मैं कहूंगा इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव करें जल्दबाजी किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती जल्दबाजी भी वैसे एक टॉपिक हो सकता है क्या आप जल्दबाज किस्म के इंसान हैं फौरन जज्बाती हो जाते हैं अच्छा वैसे मैंने देखा है आजकल जो है ना जरा हालात ऐसे हैं कोशिश करें कि किसी से ज्यादा गपशप ना करें मोहमारी जो है ना ये जिसको कहना चाहिए ना जरा जरा बंदा हीरो चल रहा होता है अपनी तरफ से लेकिन अगले का कुछ पता नहीं क्या पता वो खुदकुशी के मूड में हो तो कोशिश करें दूर बचें लोगों से ऐसी मैंने कहा सुबह सुबह मेरे मतलब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही ये मैसेज दे दूं आप अच्छा जनाब मैसेज का तरीका बता दिया फिर मैं आपको बता दूं कि चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर आगाज करेंगे इस खूबसूरत ट्रैक से और ये है हमारी फेवरेट ताहिरा सैयद और क्या गाना था अपने वक्त का हिट गाना

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: We will take a short commercial break.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है?

0: अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
3: Active, yummy, adorable, zabardast. Ye pyaas to suno yaar.

जिदा वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 अयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस भी आना शुरू हो गए। अच्छा जनाब, मौसम जरा चेंज हो रहा होता है तो तबीयत भी जरा डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारे नदीम अंसारी भाई जिनको हम वेलकम कहेंगे, सलाम कहेंगे, तबीयत इनकी भी नासाज हो गई। अंसारी भाई के लिए बहुत सारी दुआएं कि जल्दी से ठीक हो जाए, और इसके अलावा अपना भी ख्याल रखना क्योंकि हालात जरा मौसम जरा समझ रहे ना। अच्छा जी, पीर एम इलियास कह रहे हैं, अयाज भाई वेलकम टू द शो, आई होप यू आर गुड। अयाज भाई आज आप नाहिद अख्तर का सुपर हिट सॉन्ग प्ले कर दें। सुपर हिट सारे गाने उनके सुपर हिट हैं यार, नाहिद अख्तर का नाम ही सुपर हिट है और नाहिद अख्तर के बहुत सारे गाने हैं। हालांकि मैडम का एक मैंने गाना रखा था, चलो मैं आपकी खातिर ये कर सकता हूँ कि नाहिद अख्तर का गाना वो अभी लगा देता हूँ। अच्छा जनाब, इसके अलावा सलाम कैसे हैं सबको, सलाम जरीनूर, जरीनूर वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसी तबीयत है, ठीक है, खैरियत से है। थोड़ी थोड़ी देर में करता रहूंगा। फरीन शहजादी, मैं क्या शहजादी जी, तुसी दसो की हाल है तुहाडा, ठीक हो, सलाम अलैकुम सबके ग्रेट लेजेंड सुपर स्टार, क्या ओफो सुन के मजा आ गया, कसम से मैं हूं तो नहीं लेकिन आपने जो इज्जत दी है ना ये वाली, सुन के अच्छा लगता है, ये बात मानने वाली। और कह रही है आप क्या जनाब, बड़ी बेसब्री से आपके प्रोग्राम का इंतजार कर रही थी। ओफ, मुझको संभालो, मुझे पकड़ो, मैं गिरने वाला हूँ। सब सुनने वालों को मेरा सलाम, वालेकुम सलाम सबकी जाने से, इतना प्यार इतनी मोहब्बत देने का बहुत शुक्रिया। हुमा सिद्दीकी भी आ गई, हुमा जी कैसी हैं आप, ठीक हैं, तबीयत कैसी है अब, कह रही है कि आपके आने से पहले आपकी खुशबू आ जाती है। होए होए होए, अच्छे परफ्यूम का ये है कि फौरन पता चल जाता है कि ये बंदा आ रहा है। हुमा जी बहुत शुक्रिया, प्यार है आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बेस्ट आप जो शुरू यार, वैसे बाकी वो मस्के वाला आ जाएगा, मस्का शो है, उसका नाम है उस्मान, उस्मान भाई बिल्कुल सही कहते हो, बिल्कुल सही कहते हो। अच्छा शो का स्टार्ट अच्छा था, मुश्क जी बड़ी मेहरबानी, मुश्क भी आ गई है, मुश्क जी कहाँ कायम है, मुश्क नाम भी इनका जरा डिफरेंट है वैसे। अच्छा जी, और इसके अलावा मिस्ट्रेस फारूक, क्या हाल है आपके, ठीक है, खैरियत से हैं फारूक भाई के, क्या हाल है, हमारा सलाम दे दीजिएगा, और आपका जो इतने प्यार से मोहब्बत से और दुआएं देने का जो स्टाइल है ना, एंड पहला ही सॉन्ग जबरदस्त था, बस अब आप सुनते रहें, अब आप सुनते रहें। गयासुद्दीन बलबन मुल्तान से तशरीफ ला चुके हैं, वालेकुम सलाम, पूरी टीम को सलाम कह दिया, और आ गई है संजू जी यानी के संजीदा, मैं क्या संजीदा, बहुत संजीदा चल रही हो तुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भी कर दिया, दुआएं भी दे दी हैं, तारा सैयद का बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग। अच्छे पीटीवी के दौर का था, मुझे याद है हम छोटे होते थे तो इस तरह के गाने आते थे, इसी दौर का ही मैं एक और गाना, पीर एम इलियास भाई ने कहा कि जरा नाहिद अख्तर को शामिल करें, तो लीजिए फिर

0: और भाई जनाब वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी 3636 पर, और इसके अलावा आप लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे मैसेंजर पर भी, व्हाट्सएप पर भी। पीर एम इलियास कह रहे हैं, आज भाई रियल आप के शो का वेट होता है, आप कराची के, अरे सरकार बहुत बहुत शुक्रिया, हीरो कह रहे हैं भाई, कराची के हीरो हैं, बेस्ट विशेस भी कह दिए हैं, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा इसके अलावा असगर साहब क्या हाल है, कह रहे हैं भाई यही गाने थे। असगर साहब अब आपको तो नो डाउट ये गाने पसंद आ रहे होंगे, हर दौर के गाने जो है वो अच्छे होते हैं, आजकल के लोगों को आजकल के गाने अच्छे लगते होंगे, और क्लासिक लोगों को जरा इस तरह के ट्रैक्स जैसे आपको पसंद आ रहे हैं। और क्यूट सी प्यारी सी तानिया जी भी सुन रही है हमें, और गाड़ी में है, मैं बाहर हूँ और सुन रही हूँ, बहुत बिजी रहती है, बहुत बिजी रहती है, इतनी मसरूफियत जो है ना तानिया जी की रहती है, मैं क्या कहूँ, बस जी आप सुनती है मैसेज कर देती है, यही बहुत है, यही बहुत है। अच्छा जनाब इसके अलावा कह रही है संजू आजकल नाम का असर था अब नहीं है, आजकल कहना क्या चाह रही हो संजू, और इसके अलावा कह रही है ज्यादा पुराने सॉन्ग नहीं रखे क्यू शीट में, और कितने पटे पुराने लाता, किस तरह के चाह रही हो तुम, हड़प्पा में घुस जाएं क्या करें, कब्रों से खोद के गाने लाए क्या करें, इससे पुराने कौन से होंगे। अच्छा जी आपकी तो पहचान है पुराने गानों को लाना जो कहीं नहीं सुने आपके शो में होते हैं, अच्छा बाकी मैं तू चैलेंज कर रही है ये बच्ची, काफी बड़ी बच्ची है लेकिन चले फिर भी। अच्छा ऐसे गाने हैं मेरे पास एक दो, लेकिन जरा सा इंतजार, क्योंकि कुछ सेकंड की ना एक ब्रेक
1: है।
2: Active, yummy, adorable, zabardast. Dil ke pyaas to suno yaar.

जी ना, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और अब शामिल करेंगे मैडम को। मैडम जी का गाना जब तक शो में शामिल ना हो ना, बस फिर दिल को करार नहीं आता। चेक करो

जनाब वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 अयाज अहमद के साथ और साथ साथ जनाब मैसेजेस करें के अच्छा स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड कर देंगे 3636 पर। अच्छा जी मुश्किल जी कह रही है कि 15 दिन पहले ना हमारा निकाह था, मेहमान थे इसलिए रेडियो से दूर थी, अब आ गई। आपका जाती निकाह था या घर में बाजी का, किसका किसका निकाह था ये बताओ। चौहारे भी नहीं हमने खाए, काफी सारे लोग निकाह का सुनते ही मुंह में चौहारों का टेस्ट आने लगा। अच्छा ये भी बड़ी बदतमीजी मैंने देखी, नोट की, एक वो जो थैलियां बट रही थी चौहारी की लूटने के चक्कर में लग रहा था। क्यों यार कब आएगी तमीज, चलो बच्चों में तो है, बड़े बड़े बच्चे मैंने देखे जमा कर रहे होते हैं, नहीं जा रही ये वाली हरकत नहीं खत्म हो रही। और मस्जिद में मिठाई के डब्बे लूटना हमने भी किया ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी तक चल रहा है फैशन। अच्छा जनाब इसके अलावा कह रहे हैं कि फरीन शहजादी कह रही है कि आजकल के हालात से हर इंसान जज्बाती हो गया। बेटा तुम कंट्रोल करो, रुमाल रखो अपने पास, जैसी जज्बाती हो आंखों में से ना आंसू पोंछ लिया करो, इतना जज्बाती सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, दिल पे जोर पड़ता है। अच्छा मुश्क कह रही हमारा था, चलो जी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, शादी का गाना ढूंढता हूं अगर मिलता है तो आपको डेडिकेट करूंगा मैं। अच्छा जी डायमंड रेन फील माय पेन, अच्छा जी सैड है आप, क्या है हुमा जी की हो गया, दसो मैनू। अच्छा जनाब असगर साहब का जिक्र किया था, मैंने किया था। असगर साहब कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी संजीदा कह रही है ये हुई ना बात, ओए होए संजीदा जी को काफी ज्यादा पुराना गाना जाना वो पसंद आया। अच्छा आप कह रही थी ना कि जरा कुछ नए नए गाने भी सुनने को मिलते हैं पुराने में से, अब पता नहीं ये भी लोगों ने सुना होगा, मेरे लिए तो नया था ये और मैंने क्यू शीट में रख दिया।

0: हाँ, क्या बात, क्या बात है, ऐसा लग रहा है टांगे पे बैठ के सुन रहा है आदमी, फुल वही वाली फीलिंग। अच्छा, जो जिस दौर में इंसान गुजर रहा होता था ना, उसकी फील आती थी, अब इस गाने में वो फील आ रही है। अच्छा जनाब, हाय बदनाम ना हो जाए, सच्ची ये कभी नहीं सुना, बहुत ही शानदार इस गाने के तर्ज, अच्छी शायरी, अच्छी, पूरा खुलासा कर दिया संजू जी ने। घर में इन्होंने टाइम जाया किया, मैं बता रहा हूँ, इनको तबसरे देने चाहिए थे, फिल्मों के रिव्यूज देने चाहिए थे, गानों के बारे में इनको बताना चाहिए, जाया किया, तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी संजू, बर्बाद कर दी जिंदगी। और इसी बात पर मुझे ना ये गाना याद आ गया, और ये मेरे बहुत फेवरेट है, और इनका नाम है गुलाम अब्बास,
1: मशहूर एक नगमा,
0: हाय हाय,
1: जो फिल्म मेहमान के लिए मैंने गाया था।
0: ठीक है अंकल
2: जी, प्लीज
1: कर रहा हूँ,
2: प्लीज
0: जी, प्लीज हो रहा है, और ये लाइव परफॉर्मेंस है, चेक करें, आवाज कंट्रोल, म्यूजिक कमाल।

0: जनाब बहुत ही जबरदस्त ये ट्रैक, और इस एक गाने को दो लोगों ने डेडिकेट कर दिया मुझे, एक संजू है और एक है तानिया जी। क्या बात है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और गयासुद्दीन बलबन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देखकर तुझको मैं मुंह फुला लेता हूँ। शुक्र आपने मुंह ही फुलाया। अच्छा जी, सुन रहे हैं एफएम 100। और जनाब टाइम चेक भी मैंने आपको बताना है, और 5-6 मिनट की ब्रेक भी है दोस्तों, तो कोई चाय शाय पापे वापे कोई बिस्किट्स कुछ भी केक भी हो सकता है। वैसे तो डिनर का टाइम है लेकिन हालात इतने सख्त हो गए कि लोग आजकल बिस्किट ही खा रहे हैं मेजोरिटी। अच्छा जी, वैसे कहने की बात है ये वाली, लेकिन है लोग फुल पिकनिक भी बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा जनाब, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मैसेज करते रहे 3636 पर।
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए 10 सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीजिए।
6: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन
5: کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں، شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی۔

क्या जबरदस्त गाना, क्या जबरदस्त, आज भी सुने तो अच्छा लगता है, लेकिन जरा ये नया स्टाइल का था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और लवली सॉन्ग कह रही है मिस्टर फारूक, बड़ी मेहरबानी। अच्छा संजू कह रही है ये तो लड़के वालों के लिए होता है, वीर मेरा घोड़ी चढ़े, लड़के से शादी कर रही है ना मुश्क, उसकी तरफ से है ना, थोड़ी सी रोटी ज्यादा खा लेती है, अकल कहीं तरह बढ़ जाती तो, देसन दा राजा उसकी तरफ से।

क्या गाना था, जबरदस्त हो गया। सुदीन बलबन, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तानिया जी भी कह रही है भाई मेहंदी हसन का गाना, मेहंदी हसन का गाना मैं आपको भी डेडिकेट करता हूँ, और खास तौर पे हुमा जी आपके लिए भी ये

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
2: FM 247 365. FM 247 365. FM 100.
0: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
3: एक्टिव यमी. ये प्यार तो सुनो यार.

Right, Janab, welcome back to Sunray FM 100. Ayaz Ahmed ke saath aur saath saath messages bhi pahunch rahe hain. Acha ji, aur Mrs. Farooq kya keh rahi? Beautiful song. Haqeeqat se kareeb song hai. Bilkul aise sahi baat ki aapne, waise kaafi kareeb hai ye. Aur Sanju ji to lagta hai khaas taur pe unko ye gana pasand aaya hai. Keh rahi hain ki wah, behtareen song aaj ke do muh wale logon ke liye. Ye kaagzi phool jaise. Kahan ghoom rahi ho? Sanjida kahan ghoom rahi? Kin logon mein uthna baithna? क्यों है ये दो मुंह वाले? आजकल एक मुंह नहीं धुल रहा, दो कैसे धोते होंगे ये? मैं तो ये सोच रहा हूँ. अच्छा जी, और इसके अलावा बड़े प्यार से उन्होंने कहा, आपसे दिल की बात करके बहुत अच्छा लगता है. भाई बहुत शुक्रिया संजू जी, बहुत शुक्रिया. अच्छा जनाब, पीर है मिलिया सयाज भाई, ऑलवेज बेस्ट शो, आई लाइक इट. थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. मैं की कहूँ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत. और जी हुमा जी कह रही है जबरदस्त सॉन्ग. हुमा जी बड़ी मेहरबानी. तानिया आपको भी अच्छा लगा कि नहीं लगा? एक और ऐसी फिट गाना है यार, जबरदस्त ट्रैक, वो मुझे याद आ गया. इस तरह का माहौल बन गया है, चेक करें जरा. ओए होए होए होए, ऑल टाइम फेवरेट.

हाय चलो अच्छा हुआ तुम भूल ही गए। क्या गाने थे यार, क्या शायरी थी। शायर पे देखो कितनी एक अजियत गुजरी होगी कि उसने इतने दुखी अल्फाज लिखे हैं, इतनी दुखी लाइनें लिखी हैं। कैसा माहौल होता था कि बंदे इस तरह के अल्फाज कहते थे। वाह वाह वाह, सलाम है उनको भैया, सलाम है। एक दफा फिर थोड़ा सा ये फिर मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा ही कमाल गाना यार, जब मैं सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है ये। अच्छा जी, इफ्तिखार अंसारी कह रहे हैं कि अयाज भाई पुराने सॉन्ग जो है ना ज्यादा प्ले किया करें, मूवी के हो नॉन मूवी सॉन्ग हो, यार दिल करता है फिर एफएम सुनने को। मैंने छोड़ दिया था न्यू सॉन्ग की वजह से। इफ्तिखार भाई कोई बहुत ही कोई भटकी हुई रूह अंदर घूम रही है, किसी बाबे से निकलवाएं आप, देखिए फ्रेश चीजें भी सुना करें, वो भी अच्छा है। पुराने मैं भी सुनता हूँ लेकिन नए भी अच्छे होते हैं यार। इफ्तिखार भी ऐसा नहीं करो, इफ्तिखार अंसारी और नदीम अंसारी दोनों जो है ना पुराने गाने पसंद करते हैं। नई चीजें भी देखो अप्रिशिएट करो। इफ्तिखार भाई ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे बना रहे नए वाले, लेकिन कुछ कुछ अच्छे बन भी जाते हैं, समझ रहे हो ना। और इसके अलावा इफ्तिखार साहब ने फिर मैसेज कर दिया, आज भाई आप भी अवाम को चोर रहे हैं। 3636 पे मैसेज लेकर भाई महंगाई का, यार मैं माजरा चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, ये हुकूमत नहीं चोर रही है तो हमारे हम भी तो उसी में शामिल हो गए ना, जिस तरीके से वो कर रहे हैं हम भी वैसे ही। रजा भाई आ गए, रजा भाई, शब्बन भाई कैसे हैं आप, ठीक है खैरियत से। मुझे टाइम दो, मैं भी बात करता हूँ फोन पे। रजा भाई मैं आपसे बात करता हूँ फोन पे। अच्छा जी, तानिया जी कह रही है बारिश हो रही है। अरे तानिया कहाँ घूम रही हो, देखो किसी ऐसी बिल्डिंग के नीचे तो नहीं हो, छत लीक हो रही हो कहीं की। कराची में बारिश होने का नाम नहीं हो रहा, बड़ी दुआएं कर रहे हैं किसी तरह बारिश हो जाए, लेकिन ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है, कौन आदमी ऐसा है पनौती आदमी जिसकी वजह से जो है वो बारिश नहीं हो रही। माँ जमीन सुन रही है मैं इस्लामाबाद से, वहाँ तो टिका के बारिश हो रही है। माँ जमीन क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम, तबीयत कैसी है आपकी। और इसके अलावा जनाब हुमा जी कह रही है टाइम इज सो अनकाइंड एंड लाइफ इज सो क्रूअल, रुला दोगी पगली, रुला दोगी मुझे, रुला रही होते खतरनाक मैसेज कर रही है तुम। राइट जनाब, और महाजमीन तो रो रही, कह रही रुला दिया, ये चेक करो, ये गाना चेक करो, ये भी।

0: क्या कहने, दिल खुश हो तो हर चीज अच्छी लग रही होती है। चांदनी रातें भी, बारिश का मौसम भी, गर्मी भी और सर्दी भी। और शब्बन भाई जब सुनते हैं तो मेरे दिल का मौसम ऐसा ही होता है। रजा भाई दी ग्रेट, प्यारे से मेरे शब्बन भाई, कैसे हो? ठीक हैं आप? बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान। जब गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, मुझे सुनते हैं, फौरन कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। शब्बन भाई, इससे ज्यादा तारीफ मैंने नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। क्या पेमेंट लेके कर रहा है इतनी तारीफें? चक्कर क्या है भाई? अनक्राई दीज डेज, आई क्राइड सो मेनी टाइम्स। घुमा क्या है, तौलिया रख लो, मैं तो कह रहा हूँ। क्यों दुखी चल रही हो, वजह क्या है? अब जरा खुशी की तरफ आओ, थोड़े से माहौल जो है ना खुशी की तरफ ले आओ। रशीद दुनिया में इतने गम, इतनी तकलीफें क्यों शब्बन भाई? बहुत चल रही है भाई, हर आदमी परेशान चल रहा है। थोड़ी देर कोई भी कॉल आती है तो मैं डर के मारे उठाता भी नहीं, हर आदमी पैसे मांग रहा है। ये आपने नोट किया होगा, हर दूसरा आदमी परेशान चल रहा है। आज से पहले इतने लोगों ने फोन करके, अब तो फोन उठाते हुए डर लग रहा है, या अल्लाह कौन है? बीच में पैसे लोगों को इतने दिए कि अब अपने खत्म हो गए, अब लोगों से हम मांग रहे हैं यार, हम अभी भी दे दो यार, हमारे पैसे में से दे दो। अरे नहीं, चाची याद आ गई, चाची मेरी प्यारी सी, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है? बहुत ही प्यारी खातून, बहुत ही प्यारी। अच्छा चाची, इस दफा जब 6 नवंबर आएगी मेरी बर्थडे, मैं अपने प्यारे चचा को जरा भूलूंगा कि हम पिछले मेरे ख्याल से 10-11 साल से मुझे अच्छी तरह याद है कि चचा मेरा प्यारा सा हमेशा केक लेके आते थे, उनकी मोहब्बत साथ आती थी। क्या बात है, दरअसल मैं उनकी अच्छी बातें याद करता हूँ। तो ये जो 6 नवंबर है, लेकिन चाची आपने आना है, उसी तरह ये नहीं हो कि आप भूल जाएं। चाची से जरा गपशप भी करते हैं ना लाइव ऑन। अच्छा जी, शब्बन भैया हमें सुन रहे हैं, शब्बन साहब के लिए गाना है, लेकिन कुछ सेकंड की ब्रेक नजर आ रही है। शब्बन भाई थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 1 मिनट। इमरान भाई बहुत अच्छी चाय थी आज, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें कोई ढाबा खुलवा दूं, कोई अच्छा साइड में ये बिजनेस भी होना चाहिए। क्या कह रहे हो? हर आदमी FM के साथ साथ नौकरी दूसरी भी ढूंढ रहा है, क्योंकि एक नौकरी से गुजारा नहीं है। इमरान भाई सही बात बोलिया। दोस्तों मिलते ब्रेक के बाद।
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: Full volume with Ayaz Ahmed, 9 to 11, Sunday to Friday. It's

जनाब वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और जनाब सिविक सेंटर के पास कह रहे हैं पांच मिनट के लिए बारे सिविक सेंटर पे कोई नेक आदमी की नेक रू रहती है कि पांच मिनट की बारिश हुई है बस इससे ज्यादा नहीं इस पांच मिनट में चेक करें कि रोड ना भर गया हो ये हालात चल रहे हैं वहां पे इफ्तखार अंसारी कह रहे हैं आज भाई आप भी तो मिक्स सॉन्ग प्ले कर रहे हैं अभी चांदनी रातें नूर जहां ने गाया आपने न्यू वर्जन प्ले कर दिया भाई मैं माजरत चाह रहा हूँ मगर मैं क्या करूँ न्यू वाला भी अच्छा था ना इसलिए बाज लोग वो तस्लीम ही नहीं करते ना कह रहे नए गाना मैंने सुनना ही नहीं मतलब कसम खा ली इस बंदे ने कि मैंने नया भाई यार नए लोगों को भी चेक कर लो कुछ पता नहीं हालात सही हो उनके उन्होंने भी अच्छा गा लिया कह रहा नहीं मैंने बचपन में जो सुना वही सही है अब जितना मर्जी ये गा लें वो वाली बात नहीं आई क्या करूं मैं अच्छा जी मिसेस फारूक क्या कहनी ओल्ड सॉन्ग इतने रोने वाले होते हैं बट सॉन्ग्स आला प्ले हो रहे हैं बड़ी मेहरबानी सरकार बड़ी मेहरबानी और संजू जी क्या कहनी दिल का मौसम अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है माँ नमाज और दुरूद अच्छा ठीक हो गया फौरन इस्लामी तरीका बताया फुल टाइम खुद रेडियो सुन रही और इस्लामी तरीके बता रही शब्बन मियां चेक करें सर आपके लिए

क्या ट्रैक है, बहुत दिनों बाद सुना और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, आपको गुलबानों की कसम एक पश्तो सॉन्ग लगा दो। नदीम बंगश भाई वो तो सुनती नहीं, जितनी मर्जी तुम कसमें खा लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसी बात पर। हाय हाय सलीम मेमन भाई, क्या हाल है आपके? सलाम अयाज भाई, अरे हम भी 6 नवंबर को आपकी बर्थडे पर आएंगे। अरे सरकार, दूर से भी आप हमें सलाम दुआ कर लेंगे, मुबारकबाद दे देंगे, बहुत है, लेकिन आपके प्यार का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। लो जी फिर चेक करो।

हुआ जनाब, सुन रहे हैं फिल्म 100 और गाने पसंद आ रहे हैं। हुमा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीर है मिलियास करें आज भाई, मुन्नी बेगम बस कर दे यार, पीर भाई इतनी फरमाइशें करे जा रहे, सुबह से उठा है फरमाइशें लेके उठा है, मत करो ऐसे। तुम मुंडा पटवारी ही क्यों अखियां मारता है ये तो अल्लाह जाने, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, शायर ही इसके बारे में बेहतर बताएगा कि भाई क्यों मार रही है आंखें। अच्छा भी नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और शामिल करेंगे मेहनाज जी को।

right, जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 36363। नाइस सॉन्ग जरी नूर के भी मैसेज आ गए हैं। इफ्तिखार अंसारी क्या कह रहे हैं, डेडिकेटेड बाय अयाज अहमद एंड ऑल FM 100 टीम। तेरा नाम सुनते ही चेहरा खिल सा जाता है। अच्छा भैया, तेरा नाम सुनते ही चेहरा खिल सा जाता है। मोहब्बत कितनी करता हूँ अंदाजा खुद लगा लेना। कोई रदीव, कोई काफिया, कोई वजन, कोई हालांकि शेर शायरी में इतना करता नहीं हूँ, लेकिन ये ठीक है। लेकिन मोहब्बत आगे पहुँच गई। इफ्तिखार भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन खुश हो रहे हैं। जब भी मैं नास का गाना लगाता हूँ ना, तो गयास भाई बहुत खुश होते हैं। इसी तरह जब मैं अहमद रुश्दी का गाना लगाऊं तो हमारे फुप्पा, हाय हाय हाय हाय, वो भी बड़े खुश होते हैं। फुप्पा अगर सुन रहे हो तो रेडी हो जाओ, ब्रेक के बाद अहमद रुश्दी साहब का गाना मैं लगाने वाला हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जनाब किसका मैसेज आ गया, संजू जी कह रही है वाह मेहनाज गीत मेरे प्यार का शुक्रन, इस सॉन्ग के लिए कितनी हकीकत है। अच्छा, कैसे पता चल जाता है कौन सी हकीकत है कौन सी झूठ है, कैसे बता देती हूँ, कौन सा मीटर है तुम्हारे पास। मीठी सुरीली आवाज मेहनाज जी ने, इसमें तो कोई शक की बात, ये तो आपने सही बोला। लेकिन संजू को सब पता चल जाता है गाने से, क्या कहने संजू, छा गई आप। चाची मेरे इतने प्यार से जो है ना मुझे मैसेज करने जा रही है, खुश रहें चाची। अच्छा जनाब, और इसके अलावा रुबाब आ गई है। रुबाब जी क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, सब सुनने वालों को भी सलाम संजू। और ये संजू के लिए मैसेज कर रही, मैं वो उनको जो है ना भाई, तुम डायरेक्ट कर लिया करो मैसेज, डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो उनके मोबाइल पर। हाँ हाँ, मैसेज को चक्कर पे चक्कर लस्सी दिला रही हो, डायरेक्ट संजू को मैसेज कर दिया करो भाई ये सलाम अलैकुम। अच्छा जनाब, कुछ सेकंड की जो है ना वो ब्रेक आ गई है, सुनते रहे FM 100 साथ साथ मैसेजेस। दोबारा मैं आपको बता दूं, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर।

0: पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके दो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM247365
3: FM247365
4: Active, yummy,
3: adorable,
4: seven.
3: ये प्यास तो सुनो यार।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ, और गले में हो रही है थोड़ी थोड़ी खिच खिच, और ये सब्सेस जो है ना इस सीजन में बेहतरीन चल रही होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जरा इस तरह करने को दिल कर रहा होता है। अच्छा जी, अब जरा अहमद रुश्दी का गाना मैं आपको सुनाता हूँ, और डेडिकेट करते हैं हमारे प्यारे से फुप्पा जान को, और सॉन्ग है कैसे

हाँ जनाब, सुन रहे हैं 100 अयाज अहमद के साथ। और चाची ने ये गाना सुना तो नहीं था, लेकिन बात इससे मुतालिक कर दी है। कह रही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे ना तो मोहब्बत का भूत निकल जाएगा। बेहतरीन बात की।

वजन सुन रहे फिल्म 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पी रहे हैं। इलियास कह रहे हैं अयास भाई ओके सरकार बड़ी मेहरबानी। मधिया के भी मैसेज आ गए हैं। मधिया जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, इतना सारा प्यार, इतनी सारी मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आप माशाल्लाह बहुत जहीन कमाल आ जाए, अल्लाह बद नजर से आमीन सुमा आमीन, अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत शुक्रिया। हाय हाय क्या खूबसूरत गाना, क्या खूबसूरत गाना आ गया याद मुझे।

फुफा जी सुन रहे FM 100 अयाज अहमद के साथ। और फुफा जी क्या बात है, इतना प्यार इतनी मोहब्बत। फुफा बातें करते करते जज्बाती भी हो जाते फुल टाइम। फुफा जी हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। राइट जी, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले संजू जी बहुत शुक्रिया, गाना कहनी है भाई, बेहतरीन सॉन्ग और मुझे डेडिकेट कर भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।

0: अंजन आप सुन रहे फिर 100 गाने इतने तवील हैं, बंदा रोटी खा के निकल जाए फिर भी गाना खत्म नहीं होगा। अच्छा जनाब, नौरीन तौसीफ आ गई हैं, बैकग्राउंड में रख लेते ना।
1: छोटी छोटी सी
0: वाह, यानी अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे मिजाज हैं? ढेर सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन समातों के लिए भी। उर्दू का कायदा निकाल लिया मैंने, जो ऐसा लग रहा है नौरीन इतनी अच्छी उर्दू, माशाल्लाह। टोपी पहन के पढ़ने को दिल कर रहा है ये मैसेज, वाह वाह वाह। अच्छा जी, ये गाना सुन के कहनी है महजबीन नदीम साहब याद आ गए। नदीम साहब कब याद नहीं आते, इतने गाने लगाता हूँ नदीम और वहीद मुराद साहब याद आते हैं मुझे। शबनम जी आए हाय, शबनम जी के क्या कहना,
1: सारी बातें,
0: क्या खूबसूरत मूवीज थी, क्या आला म्यूजिक था, इसमें कोई शक की बात नहीं, महजबीन कोई शक की बात नहीं।
1: जिंदगी में ऐसे
0: अच्छा जना, बेहतरीन सॉन्ग कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कहूँ, वाह वाह। बहुत शुक्रिया नौरीन जी, बहुत शुक्रिया। उमा सिद्दीकी भी आ गई है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, संजू जी ने एक मैसेज भेजा था, वो मैं पढ़ नहीं पाया लेकिन अभी मुझे नजरों के सामने से गुजरा। वो कह रही है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बेटा ताली तो बज रही है लेकिन इसमें मुंह ना आ जाए इस ताली में,
1: क्यों ना चुप रहूं।
0: और कह रही है अपनाइयत देते हैं आप तो हम भी आपको, ये सब लौटा रहे, बड़ी मोहब्बत है। अच्छा जनाब, इसके अलावा फजल जाकरो, जाकरो साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं, खैरियत से हैं, क्या कह रहे हैं भाई, एक मिनट जरा मैं। हाँ, ठट्टा कराची से, अयाज देयर शो इज वेरी नाइस, प्रोग्राम में कॉल्स का सेगमेंट बंद किया हुआ है। फजल भाई बंद किया हुआ, लोग नाराज हो रहे थे मेरी कॉल नहीं मिल रही, इसकी नहीं मिली, हमने कहा किसी की भी नहीं मिली, डायरेक्ट बातें करेंगे हम। पी रमिल यास, अयाज भाई सुपर शो, नाइस क्यू शीट, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। संजू जी भी इस गाने की बहुत तारीफ करते हैं भाई, वाह वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी। मैं फारूक हंसती रहे मुस्कुराती रहे, बस इतनी अच्छी लगती है आप हंसते मुस्कुराते ना। कभी कभी मुझे लगता है मैं शाही मस्करा तो नहीं, वो आके बैठ जाता बंदा। अच्छा जनाब, गाना हो गया खत्म और अब हम बढ़ते हैं जरा छोटी सी ब्रेक की जानिब, और वो है कैसे,
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका, पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मुमान, अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतर इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां बात है, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एल वाजे मकसद और मजबूत

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्य नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247 365 FM 247 365
3: Yummy.

जी वेलकम बैक, सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं। नौरीन कह रही है, संजू मेरी प्यारी बहना को अच्छे से सॉन्ग डेडिकेट करते, सारे गाने उनके लिए भाई, सारे सॉन्ग उनके लिए, बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, हुमा जी क्या कहनी है, द रोड इज नैरो एंड लॉन्ग, व्हेन आईज इज मीट आईज द फीलिंग इज स्ट्रांग। कहां से छापे जा रही हो देख देख के हुमा सिद्दीकी, कहां से छाप रही हो ये सारी चीज। लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था, जबरदस्त। अच्छा जना, तानिया जी भी बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं। तानिया जी खुश रहे हैं, आप ड्राइव कर रही है फुल टाइम, रात किस टाइम पे ड्राइव करती है, ड्यूटी है तुम्हारी, क्या है चक्कर, गश्त पे होती हो, क्या होता है ना, जैसे मोहल्ले का पूरा वो चक्कर लगा के आना होता है। कुछ रिपोर्ट दे तानिया जी, मुझे लग रहा है कुछ शक है, पूरे मोहल्ले पे नजर रखी हुई है तानिया ने कि कहां क्या हो रहा है। तानिया खुश रहो यार, बहुत ही स्वीट है ये भी। अच्छा जी, पीर अमिल यास तो इतना तारीफें कर रहे थे, पीर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, संजू कह रही मैं मुस्कुराती जहर लगती हूँ, अपने बारे में इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। कोशिश करो कुछ जहर मीठा डालो, कुछ ऐसा करो कि कुछ इंसान लगो तो। भाई जनाब, नेक्स्ट ट्रैक के जाने पर तानिया जी क्योंकि गाड़ी में सुन रही हमें, तो उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं ये।

मैं जनाब वे मैं चोरी चोरी ला लिया अखा वे क्या कहने जनाब क्या। रेशमा जी याद आ गई मुझे, क्या खूबसूरत उनकी आवाज, क्या खूबसूरत ट्रैक। अच्छा जी एक और जाते जाते मैं आपको ट्रैक सुनाने वाला हूँ, ये भी आज रह गया, मैं पूरा नहीं सुना पाऊंगा। हाय हाय।

हुआ जी। जाते जाते ये एक और थोड़ा सा मैं ये भी ट्रैक सुना दूंगा, ये भी हाय हाय हाय हाय दायरा सैयद जी की भी क्या बात है, आवाज भी हमने इनसे किया था। जाते जाते एक दो बोले एक और, हाय नदीम क्या हाल है तेरा, नदीम अख्तर भी तशरीफ ला चुके हैं। हम सौ तो सामने नहीं, हम नहीं आ रहे सामने, हम साइड पे रहते हैं। एक जाते जाते एक और ट्रैक खूबसूरत सा, और उसके बाद टाटा बाय बाय।

रंजन आप इसी के साथ ही हम चाहेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। अयाज अहमद को दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान।

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: This is your music.

0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum, Pakistan. Mera naam hai Nadeem Akhtar aur pyar se aap log mujhe kehte ho NS Zoneo.
1: Habibi.
0: Music Twister mein kahunga aapko khush aamadeed. Aapka aur mera saath hai janab. 1 baje tak aur 1 baje tak karenge khoob Allah de gulla. Is halqe mein shamil hone ka bahut hi aasan sa tareeqa hai. अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, क्यों चाहे लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार. जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, ट्रैफिक सिग्नल की पास जारी करें, बड़ी मेहरबानी होगी. कोई ना कोई मैं सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब 3636 बार. मगर उससे पहले आप लोगों को किया जाता है वार्म अप, और वार्म अप करने के लिए गाना हेलो पढ़ो.

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको पावे सिर दी बाजी लग जावे ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको आया होगा पसंद. मैसेजेस कर रहे हैं आपके चॉइस पे, आपका नाम आपका मैसेज और उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर. सवाल करेंगे, बहुत ही आसान से सवाल है. सवाल ये है, बताएं वो क्या है जो जिसका मुंह तो है पर वो बोलता नहीं है. बस ये सवाल है, ये पहेली है, रिडल है. मुंह है पर बोलता नहीं, बताए क्या. इसी बात पर हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब और आप इस बारे में सोचें.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: वेलकम बैक अगेन जनाब. सवाल मैंने फ्लोट किया है, पहेली है, रिडल है, मुंह है पर बोलता नहीं, बताएं क्या है. और बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब. और सबसे पहले क्या बात है, हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने फीता काटा है और क्या कहती हैं. अरे बहुत कुछ कह रही हैं भाई.

कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? आज है ढेरों दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन जमातों के लिए भी। किसी और की आदत डालने से अच्छा है चाय की आदत डाल, तकलीफ नहीं होगी, सरदर्द भी नहीं होगा। क्या बात है। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, दोनों सूरतों में आंखें तो जलती हैं। हाय अल्लाह जी, कितनी सीरियस बात कर दी आपने। 40 का आलू 50 की प्याज, बाबू कब सुनाओगे तुम अपनी आवाज। ना 40 का आलू है ना 50 की प्याज है। प्याज आजकल 200 रुपए किलो और आलू तकरीबन 100 रुपए, 120 रुपए। लेकिन रतीफ काफी है बनाना था। क्या बात है, हमारी आवाज आ गई आपके सामने मेरी प्यारी सी बहना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। मुश्क आ गई है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेस्ट आरजे, आज शो शुरू से ज्वाइन किया। हैंडसम कहां गया भाई, आपने कल पूछा था हम कहां गायब हैं। तो 15 दिन पहले हमारा निकाह हुआ है, मेहमान थे इसलिए शो से दूर थी, अब आ गई हूँ आपके शो में। सब फैमिलीज मेंबर्स को आदाब, कैसे हैं सब? ओके ठीक भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब खुशी की बात, हमने कौन सी मिठाई मांग लेनी थी, दुआएं देनी थी, बता रही थी। लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मिर्जा साहब आगे ने कह रहे ने फ्राम गुजर खान। तो अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, खुश आमदीद और जी आया नो। कह रहे सवाल थोड़ा जी आप मुश्किल है, और कोई मुश्किल नहीं का, जरा दिमाग ते जोर दे, मुंह है पर बोलता नहीं। आप बहुत आसान है, थोड़ा सा जहन पर जोर दीजिए। वैसे अच्छा भाई, हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब कह रहे हैं वाजिब उल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, सजाद अली मेहंदी हसन की आवाज सुनवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। नसीम कुरैशी, इमरान रियाज, अय्यूब आफरी, कदाब गुल्लाल, नसीम कुरैशी और आपके इंतहाई वाजिब उल एहतराम वाले मोहतरम जावेद अख्तर साहब की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। हर लम्हा दुआ को नए ख्वाहिशात के साथ, अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई, एफबी एरिया, कराची। ओए होए, एक ही सांस में मैं बोल गया इसी बात पर। अलीमुद्दीन साहब आपका गाना तो हम बाद में चलाएंगे, फिलहाल क्योंकि मुश्क का मैसेज आया और उनका निकाह भी हुआ, तो मुश्क तुम्हारे लिए एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको और माही आजा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बहन माही भी आती थी, वो आजकल नहीं आती है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो माही को भी डेडिकेट करेंगे, मुश्किल ये तो था ही। और सनम आ गई है मुल्तान से, करेंगे सबको सलाम। नरीम भाई कैसे हैं आप? हम ओके टेक, आप कैसी हैं भाई? इतवार वाले दिन तो बिरयानी कैसी बनी थी जरा ये बताइएगा। तारीफ वारीफ की किसी ने या नहीं की, बेटी और दामाद ने तारीफ की या नहीं की ये जरूर बताइएगा। अच्छा भाई पहेली का जवाब नहीं आता कोई बात नहीं, टेंशन आप भी टेंशन ना लें। हैं जी ते हैं जी, करी वाओ सॉन्ग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो औरत आपकी पसली से निकलती है वो आपकी पसली तोड़ने जरूर आएगी, बस थोड़ा सबर करें, जज्बाती ना हो, तुम भी जाने वाली हो पसली तोड़ने के लिए। और अफ्रीका में एक काले शौहर ने अपनी काली बीवी को काली रात में काले समंदर के पास बड़े प्यार से पूछा, डार्लिंग बैठी हुई है चली गई समझ नहीं आ रहा आ गाओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त मुश्क मूड में फुल जाहिर निकाह हुआ है भाई, खुश तो होगी ना, यानी के समझ रहा है ना। मिर्जा साहब कहते हैं कोई करके बहाना ले ले, सुनको अच्छी लग रही है भाई। ओके ठेक आपको और गाने भी अच्छे लगेंगे और आगे बढ़ते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, हमारे आ गए हैं सलीम अमन भाई। कह रहे सोने ओ वाइफ मार्केट गई और जाते हुए कहने लगी कि बर्तन धो देना वरना मैं आकर धो दूंगी अब उसने जो कहा था ना धो दूंगी अब मेरी समझ में आया आ नहीं रहा है कि मुझे धोएगी या बर्तन को धोएगी, अपनी खैर मनाओ लिहाजा बेहतर बर्तन धो दो यानी कि समझ रहे ना भाई। शो तो बर्तन धोते हुए भी सुना जा सकता है, जैसे इतवार वाले दिन हमारी बहन सनम जो है बिरयानी पकाते हुए जो है शो सुन रही थी। और अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुश्क बहुत बहुत मुबारकबाद, पेशे खिदमत है, मेरी तरफ से सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं। मिसेस मुश्क बन गई हैं, क्या नाम है दूल्हे का, ये पूछ रही है नौरीन तौसी मुश्क। सही जवाब इन्होंने दे दिया है जो कि मैंने महफूज कर लिया है। वैसे जो आपने जवाब दिया ना आजकल बोल लेते हैं यानी कि समझ रहे हैं ना हबीबी हाय हाय हमारी प्यारी सी चाची। हाय चाची द ग्रेट है आप, वाह वाह, चाची का जवाब हमेशा की तरह दुरुस्त। और आगे बढ़ते हैं, चाची सिर्फ जवाब ही दिया। हमारे अब्बास भाई आ गए हैं तारिक रोड वाले, कह रहे अस्सलाम वालेकुम, और तमाम सुनने वालों को भी उन्होंने अपना प्यार भरा सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम अब्बास भाई, ठीक ठाक है, ओके ठीक है, काम वाम सेट चल रहा है। वैसे तो आप यहाँ से दूर चले गए हैं, पहले आप तारिक रोड होते थे, आपसे चाय नहीं पी सके, लेकिन इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। ढेरों दुआएं दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जीत रहे हैं मुस्कुराते थे। मुश्क आज तो फुल फॉर्म में, कहती है कौन कहता है कि मौसम चार होते हैं, मौसम तो पांच होते हैं, पांचवा मौसम दिल का होता है, वाह वाह, जो कि तमाम मौसमों पे हावी होता है। भाई बड़ी शायराना गुफ्तगू करने लगी, वाह वाह, मतलब ये लाजवाब करने वाला सवाल है, ये आदमी इस पर कुछ कह भी नहीं सकता। मौसम तो चार होते हैं, पांचवा कहां से, लेकिन पांचवे की जो उन्होंने दलील दी है वो भी बड़ी प्यारी दी है। लेकिन आपको ये भी बताऊं, ये पांचवा मौसम दिल का होता है जो कि तमाम मौसमों पे हावी होता है, क्योंकि दिल का मौसम जब खराब होता है ना, ओए होए होए होए, की हाल होता है जिनका दिल का मौसम खराब होता है, उन्हीं को पता है। जाएंगे जनाब एक ब्रेक की जाने।

0: नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड करेंगे 3636 पर और अभी आपको लेकर जाएंगे एक और बहुत ही जबरदस्त ट्रैक जाने और ये हमारे भाई नुमाइश वाले इस्माइल भाई को डेडिकेट करेंगे और एक और हमारे अरबिक भाई आते हैं उनको भी डेडिकेट करेंगे एल्लो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। उम्मीद करता हूँ गाना सारे पसंद आ रहे होंगे आपको। और कह रही है जब तक हूँ आपको तंग करती रहूंगी, अब तंग आ जाएंगे, मेरा बच्चा मैं तंग नहीं आऊंगा, डोंट वरी। औरत और सिगरेट कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकते जब तक उन्हें खुद तीली ना लगाई जाए। बात तो सही है यार, लॉजिकली बातें हैं इसकी है। ओके ठीक। और अब्बास भाई की मैसेज बड़े आ गए भाई, और कह रहे हैं कि भाई चाय पियेंगे आप। हमारे पास चाय आ चुकी है भाई, हम पी रहेंगे। और आज क्या लिखा हुआ है आपने, कोई इशारे बना दे भाई, जैसे चाय का आपने इशारा दिया इसी तरह अब्बास भाई दूसरे भी इशारे बना दे। और जनाब मिर्जा साहब की कहने पे ने सवाल का जवाब भी हो सकता है, क्या बात है भाई। वैसे एक बात बताऊं मिर्जा साहब, आपका जवाब गुप्त रख लिया मैंने, लेकिन आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि समझ रहे ना आप। सोचिए, देखिए आपने थोड़ा सा सोचा। पहले तो आप फुल टाइम हार मान के बैठ गए थे, और अब आपने मेरे कहने पर थोड़ा बहुत सोचा, तो बहुत करीब आ चुके हैं आप, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ नौरीन भाना क्या कह रही है, कह रही है खामोश आंखों का असर पूछ रहे हो तुम, डूबते दिल की खबर पूछ रहे हो तुम। एक मुस्कुराहट ने लूट लिया था हमें, और अब इश्क की वजह पूछ रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, दिल की बात की उम्रहट में ही आपने। वाह वाह, खामोश आंखों का असर पूछ रहे हो तुम, डूबते दिल की खबर पूछ रहे हो तुम। एक मुस्कुराहट ने लूट लिया था हमें, और अब इश्क की वजह पूछ रहे हो तुम। वाह, भाई हम तो आज इसी तरह पढ़ेंगे शेर, माजरत के साथ नौरीन बहना, उसकी वजह है थोड़ा अलग अलग रहना चाहिए ना। और जरा आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जाने, बस स्क्रॉलिंग करना पड़ रही है भाई। सलीम मेमन भाई का मैसेज पढ़ा था हमने, हाँ पढ़ लिया था भाई। नदीम भाई 3636 बड़े जालिमाना तरीके से बैलेंस चाट रहा है, पहले सिर्फ 6 रुपए लगते थे, और अब 6 रुपए के साथ 20 से 25 रुपए बैलेंस से काट लेते हैं। नदीम भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वरना मैं तो मैसेज नहीं कर सकूंगा। साहिबजादा साहब है हमारे शहजादे, साहिबजादा साहब मैं आपको एक वजह बताता हूँ, हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं ये आप जानते हैं, और मैं पढ़ता भी हूँ तमाम मैसेजेस। आपके मैसेजेस होते हैं तवील। अच्छा अब आपको पता है कि जब आप मैसेज टाइप करते हैं तो इसके वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स के बाद मैसेज तो चलता रहता है, मगर उतने जो वर्ड्स होते हैं उसके बाद दूसरे मैसेज के पैसे भी, फिर तीसरे मैसेज के पैसे भी। तो बस प्यार मोहब्बत में मुख्तसर और प्यारी सी बात करें, आप यकीन माने पैसे भी कम लगेंगे, और आपके बहुत सारे मैसेजेस भी आते रहेंगे, दो दो तीन तीन लाइनों के, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। एक तो ये तरीका है। और चाहत आ गई है, कह रही है भाई आपको एस गुल को और तमाम सुनने वालों को सलाम, नाइस सॉन्ग, नाइस बीजीएम, नाइस वॉइस एंड जबरदस्त शो दासियो काना। भाई ये चाहत हमारी एक और प्यारी सी बहना आ गई है, गुड। और चाहत के साथ एक और भी थी इनकी बहन, क्या नाम था, उल्फत था, उम्मीद था, उम्मीद। और सलाम की बात कह रहे हैं नदीम भाई मोहनलाल यूके से। नदीम भाई हरीश कुमार और फरजान कयानी और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम,

0: मैंने सवाल पूछा था कि वो कौन सी चीज है जिसका मुंह है पर वो बोलता नहीं, तो मोहन लाल साहब ने एक बड़ा जबरदस्त सा जवाब दिया है। गफरान भाई आपकी नजर जरा इसकी तायद कीजिएगा, कह रहे खावंद का मुंह तो होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। ऐसा है? वो कह रहे हाँ ऐसा है, सिर्फ सुन सकता है। प्लीज प्ले बलोच गाना। ओ अच्छा, अब आपने जो गाना लिखा है ये पता नहीं कौन सा गाना है, मैं पढ़ूंगा तो अजीब सा लगेगा सबको, वैसे पढ़ने में लग जो रहा है, हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो लिहाजा एडवांस में माजरत। लिखा हुआ है ओह गंजी हिमोरो। गुफरान भाई चेक तो कीजिए। ओह ओ एच ओ गंजी हिमरो हिमरो एच आई एम वाला इंग्लिश वाला हिम और आर ओ एच रू। मैं चेक करवा रहा हूँ, गुफरान भाई भी हंस रहे हैं इस नाम से। मैं भी हंस रहा था। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ओह उसके बाद आपको पता है। बोलो ठीक है ना, बोले भाई एच आई एम आर ओ एच हमरो जो इन्होंने लिखा है। गफरान भाई द ग्रेट है आज तो चेक हो जाएगा। सनम बहना कह रही है कि मुल्तान में अच्छा फ्रॉम मुल्तान, मैंने कोई बिरयानी नहीं बनाई, बिरयानी वाली सनम कराची से थी, आपको गलत फहमी हुई है। अच्छा ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं मुल्तान वाली सनम, क्योंकि जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा था संडे को, तो वो बिरयानी बना रही थी, तो फिर वो उन्होंने कहा, मैंने बोला कि अब सलीम अहमद साहब कहने लगे कि भाई हमें भी बुला लें बिरयानी बना रही, तो मैंने कहा भाई बिरयानी मेरी तरफ से सनम बहना के घर से, बस मुल्तान जाना पड़ेगा तुम्हें। तो उसका जवाब उन्होंने आया कि मैं कराची में हूँ, तो अब ये पता चल गया दो सनम है। आप अपना नाम मुल्तान वाली जो लिखती हैं वो फ्रॉम मुल्तान, ये बस सही है भाई, ये निशानी काफी है, और जो मुल्तान नहीं लिखेंगी वो कराची लिखना शुरू कर दें। तो माजरत, गलत फहमी दूर कर दी आपने। और मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है, भाई का दिल है तो बहन हाजिर है। जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। मुल्तानी हलवा सिर्फ सोन हलवा ही नहीं, मुल्तान के तो दाल वाले हलवे भी, पेठे का हलवा, वाह वाह वाह वाह भाई, मुंह में पानी आ गया भाई, दिल चाह रहा है खाने को, आपका चाह रहा है, सब लोग बताओ। और नॉर्थ नाजमाबाद से सायमा नूर बुरफत, नूर जान बुरफत भाई कैसे हैं? सॉन्ग नूर बानो, ओके नूर बानो का सॉन्ग है या नूर बानो को डेडिकेट करना है, क्या लिखा है मेरी बहन, ना जरा दोबारा से लिख दो, यानी कि समझ रही है ना। अच्छा जनाब, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद हम आपको लेके जाएंगे गाने की जाने, और ये गाना गो के उनका कोई मैसेज नहीं आया, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना हलीमा पठान उनका फेवरेट गाना है वो, जो है हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो गाना चल रहा है तो हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक।
1: FM 24/7/365

0: वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सुन। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यार सा नाम, प्यार सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल मैंने आपसे पूछा है, मुंह है बोलता नहीं, रिडल है, बहुत ही आसान सा है, हमारी चाची बता चुकी है, लेकिन चाची ने बोला ये सही नहीं है, हजारों चीजें बता सकती हूँ, लिहाजा चेंज करो इसको। चाची अभी चलने दें इसको, आपने सही बता तो दिया, ओके टेक। और चलें हम 12 बजे के बाद जो है वो इसका जवाब भी दे देंगे और दूसरा सवाल भी कर देंगे। हमारी चाची कह रही है तो चाची की बात कौन टाल सकता है, नो बडी कैन, हमारी ग्रेट चाची। चाची आई लव यू, हैं जी जी हैं जी। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, आपके मैसेजेस का जहां है, और आसिफ अली आ गए हैं क्लिफ्टन से। सुने हो आपको और तमाम लिसनर्स को सलाम, मैंने सुने हो मेरे भांजे की आंख में जाली है, दूर की और नजदीक की नजर वीक है, कौन सा हॉस्पिटल ठीक रहेगा? किडनी का हॉस्पिटल बिल्कुल सही रहेगा, या दिल के अमराज के पास चाहिए? अरे भाई जाहिर है आंखों का जो हॉस्पिटल है वही बेहतर रहेगा। वैसे आसिफ मैं आपको एक इस हवाले से सीरियस अब बात बताता हूँ, और वो ये है कि भांजा है, जाहिर है उम्र छोटी होगी, तो फौरन से पेशतर एक तो इनका इलाज करवाइए, दूसरा आंखों के हॉस्पिटल के हवाले से बेतहाशा हमारे कराची में हॉस्पिटल्स हैं, और उनमें ऐसे भी हैं जो कि चैरिटीज हॉस्पिटल हैं, कि आप अगर जाएं तो वहां पर आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है, कुछ जगहों पर थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, बहुत थोड़े से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि वो इतने पैसे लेते हैं कि बस भाई आंख तो सब इंसानों की एक तरह की है ना, तो बस उसी हिसाब से डॉक्टर जो है ज़िबा कर रहे होते हैं, अमीर से उतना ही ज्यादा पैसा लिया जाता है, और उनको थोड़े से कॉन्शियस भी होते हैं, भाई बहुत जबरदस्त स्पेशलिस्ट के पास जाना है मेरा, मेरी आंख का मामला है भाई, आंख में कुछ भी नजर आता है, तो बेहतरीन स्पेशलिस्ट बताओ, तो आप उनको बताएंगे ना सर वो जो हॉस्पिटल है ना फला हॉस्पिटल, वहां पर आप यकीन माने 5,000 रुपए में आपकी आंख का इलाज हो जाएगा, और बेहतरीन डॉक्टर है वहां। नो नो नो नो नो, आई डोंट टेक रिस्क, वही डॉक्टर अपने क्लिनिक पर वो 5 की जगह 50,000 रुपए ले रहा होगा, तो वो खुशी से दे रहा होगा, तो लिहाजा इस चीज को जहन में रखिएगा, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर है ना, तो लिहाजा बहुत सारे हॉस्पिटल हैं मेरे शहजादे, दुनिया बदल चुकी है, एआई आ चुका है, गूगल आपके पास है, गूगल कीजिए, एआई से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कौन सा बेहतरीन हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाइएगा, दिल मुतमईन हो तो, यानी कि समझ रहे हैं ना, लेकिन इसमें ताखीर मत कीजिएगा, यानी कि देर मत लगाइएगा, बच्चा है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी करे और उसकी ये नजरें जो हैं वो बिल्कुल चाको चौबंद कर दे। सुने हो हमारे दोस्त हुज़ैफ़ा आसिफ की बर्थडे है, आप उनको विश कर दें, और हो सके तो कोई सॉन्ग भी डेडिकेट कर दें। सलीम मेमन कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है सलीम मेमन, हुज़ैफ़ा की बर्थडे हो और आपको अब याद आ रहा है 3 मैसेजेस के बाद, क्यों इतनी देर में याद आया पहले तो ये बताएं। वैसे तो हम अपनी जानिब से कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई ये कौन है, एक मिनट, ये मैसेज मुझे कुछ अच्छा, चाची चाची हमारी, अच्छा हाशमी है या हाशमसानी है, इज द बेस्ट, हमारी चाची बता रही है, आंखों का हॉस्पिटल के मार्केट में फ्री है, अच्छा ली मार्केट की तरफ है भाई एक हॉस्पिटल, हमशानी है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह इस नाम का ली मार्केट की जानेब हमारी चाची ने बताया, आंखों का हॉस्पिटल है आसिफ, अपने भांजी को लेकर जरूर जाना, ये ऐसी बातें चाची ही बताती हैं अच्छी अच्छी सी, और ये सदका जारिया भी होता है, आपको कोई अच्छी चीज बात पता है जिससे लोगों को फायदा हो सकता है तो वो आगे बढ़ाएं, यानी के समझ रहे ना आप। और हेलो नदीम भाई साहिबजादा जीते रहो मुस्कुराते रहो इतना छोटा मैसेज भाई वो तकरीबन मेरा ख्याल है 160 या 180 वर्ड्स होते हैं जिसमें एक मैसेज लिखा जा सकता है तो कम से कम 160 100 तो बुरे करो लफ्ज अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई आप अयुब लाला संजू और आपी और मुश्क महानूर चाहत और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार वाला सलाम
1: एस गुल आ गई है लाला नहीं आए तुम आ गई ये तो गलत बात है लाला को बुला के लाओ पहले
0: लेकिन आपने जब सबको सलाम कहा है वालेकुम अस्सलाम नबीद भाई भी आ गए हैं और छोटे भाई सुन रहे हैं वो और उन्होंने गाने की फरमाइश भी कर दी है सिर्फ फरमाइश ही कर रहा तो शकील नहीं सुन रहा आजकल नवीद साहब आपके साथ ये भी बताइएगा और जनाब हमारे अब्बास भाई का मैसेज आया है अब्बास भाई कह रहे हैं नदीम भाई गाने बहुत जबरदस्त चल रहे हैं लेकिन आपने एक ट्रैक मेरी वाइफ को डेडिकेट करना है बेहतरीन किस्म का अच्छा वो सुन रही है भाई वाह भाई वाह भाई मिसेस अब्बास आपको खुश आमदीद कहेंगे यानी कि समझ रही है ना भाई हमने आपका मैसेज सही पढ़ा जरा बताइएगा अब्बास भाई और जनाब कह रहे ओके ठेक पड़ा आपने सलाम नदीम भाई सनम कह रही है कराची वाली सनम बिरयानी वाली सनम आज आपके शो सुन रही हूँ और हंस हंस के लोट टिपोट हो रही हूँ बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से बोलते हैं कल बंगाली अंदाज में बोला था आपने मुझे शौक है मैं क्यों करे हम आपको बताता है कि हम इसी तरह आप बस मिमिक्री करने का शौक है इसलिए बीच में अपने शौक भी पूरे करते रहता हूँ बहन और अच्छा सा गाना मेरी तरफ से आप सबको आज संजू आई थी अयास के शो में जी बिल्कुल आई होंगी और कहाँ गायब थी मेरी तरफ से सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम इरम आ गई इरम यूनस कैसी हो बहुत दिनों के बाद तुम्हारा मैसेज देखा है और कह रही है कि नदीम भाई को और तमाम लिसनर्स को सलाम नदीम भाई शो सुनकर दिन भर की थकावट दूर हो जाती है मेरी तरफ से थैंक यू जीती रहो मुस्कुराती रहो कोशिश किया करें कि आप लोग जब शो सुनते हैं ना तो सारी टेंशनें जो है ना मतलब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है जिसको टेंशन ना हो है भाई ज्यादातर लोग टेंशन में हैं तो बस कोशिश ये करनी है कि भाई अपने आप को रिलैक्स करना है सुकून के साथ सो जाने सब्जियों के भाव बिल्कुल नहीं सोचते कल क्या पकाना है ये भी नहीं सोचता मेहमानों ने आना है और क्या होगा ये भी नहीं सोचता नौकरी की परेशानी बिल्कुल नहीं सोचता कारोबार में घाटा बिल्कुल नहीं सोचता ओए होए होए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो मैंने बताना ही भूल गया वो आपको इस ब्रेक के बाद बताऊंगा
2: FM 100's time check. It's 12 midnight.
0: Welcome back, कहेंगे तो ये परेशानियों को साइड पर कर देना है कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जब शौहर घर पर आता है आज आपको पता आपकी बहन ने क्या किया बेगम बैठ जाती है अब भाई उसको सांस तो लेने दो आज मेरी खाला का फोन आया था पप्पो का फोन आया था चाची का फोन आया था तो ये जो डिस्कशन होती है ना इसको भी साइड पर रख देना है और सिर्फ एंजॉय करना एंजॉय बस बताना है मुंह है बोलता नहीं दसों की बस अभी थोड़ी देर में बताऊंगा लेकिन आप लोगों को एक गाने की जानब लेकर जाना है और वो भाई वो गंजी वाला जो गाना था ना गंजी अमरोही ये हमारे प्यारे से राज दुलारे से आंखों के तारे से मोहन लाल साहब ने इसकी फरमाइश की थी बलोची गीत है जनाब और बलोची मुझे वैसे ही बहुत पसंद है जी इनकी म्यूजिक आए हाय हाय एल्लो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे ब्यूटीफुल ट्रैक ब्यूटीफुल ट्रैक। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं फुल टाइम झूम रहा था, समझ कुछ नहीं आ रहा था, मगर हमारी फोक म्यूजिक में जो शहर है वो मेरे पड़ोस में रहती है। मजा कर रहा हूँ, वो शहर कहाँ, कहीं भी नहीं हूँ। मैसेजेस आपके आ रहा है 3636 पर। सवाल को हम पहले अपनी चाची की बात जो है वो भरपूर तरीके से ओके टेक करेंगे। चाची ने कहा था कि फौरन से पिछला जवाब दो और दूसरा सवाल करो। हम चाची हाजिर हम सवाल कह रहा हूँ, मुंह है पर बोलता नहीं है, दसो की लेकिन तुसी हो दसिया नहीं, तो भाई जो गूंगा हुआ कैसे बोलेगा। अच्छा हमारे जो है क्या नाम है मिर्जा साहब, मिर्जा शुजात, उन्होंने कहा बोतल, बोतल का मुंह होता है मगर बोलती कहाँ है। मेरे पास जो जवाब लिखा हुआ है वो है मटका, यानी कि घड़ा, मटका, मटके का मुंह होता है मगर वो बोलता नहीं है। तो लिहाजा चाची ने इसी वजह से ये बात कही और बिल्कुल दुरुस्त कही है कि इस तरह बहुत सारे ट्रिकी सवाल था, ये बेसिकली ट्रिकी पहेली थी। आप बोतल भी 100% कह सकते हैं, गूंगे बंदे का भी कह सकते हैं, गुड़िया का बताया हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने, वो भी दुरुस्त है, गुड़िया का मुंह होता है, बना होता है मगर वो बोल नहीं पाती। और इसी तरीके से तो जवाब इसके बेतहाशा है। तो ये सवाल मैंने किया था जिसका जवाब जो है वो मैंने आपको बता दिया, सारे जवाब बता दिए हैं और अब जो है हम दूसरा सवाल करेंगे मगर कुछ ही देर में। हमारे सलीम मेमन साहब ने एक चुटकुला भेजा है लेकिन यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी कि समझ रहे ना, पढ़ने वाला नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है मगर मैं ये नहीं बेहतर समझता। नॉर्थ नाजमाबाद से हमारी सायमा नूर बुरफत, नूरजहान बुरफत कह रही है गाना है ये, ओके जनाब चेक करते हैं अभी, डोंट वरी डोंट वरी। और जनाब सलाम के बाद कह रहे हैं यूसुफ भाई पावो से आ गए, तमाम एफएम 100 की फैमिली को, आंटी को, चाची को, रूसा को, सबको मेरा सलाम। एक कल मेरी बेटी खुशी की बर्थडे है, आई सो स्वीट, 6 अक्टूबर को, आप उसको बहुत अच्छा सा विश कर देना, कर दीजिएगा कोई अच्छा सा ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा लाजमी से। भाई मैं आज कर दूंगा, 12 बजे के बाद डेट चेंज हो चुकी है, 6 लग चुकी है। हैप्पी बर्थडे हम आज करेंगे क्योंकि कल के शो में पाकिस्तानी मूवीज के गाने, जानते हैं आप पुराने, बहुत पुराने, तो वो हमारी प्यारी सी शहजादी छोटी सी जो है खुशी, क्या नाम है प्यारा सा, आपकी जो खुशी है हमारी जो खुशी, तो हम आज उनको डेडिकेट करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। नदीम भाई मेरा ये मैसेज प्लीज पढ़ लें आप, अरे आपके सारे मैसेज तो पढ़ लिए हमने। ये हमारी एसगुल है, एसगुल आपका मैसेज पढ़ा था उन्होंने, कैसे बात कर रहे हैं। इमाम बख्सियाल साहब, बहादुर खान सियाल, आज भाई साथ ले आया है बंदों को भाई फुल टाइम, इमाम बख्श सियाल और कामरान सियाल, प्लीज प्ले शम्मन अली मिराली। भाई 12:09 पर आपका मैसेज आया तो लिहाजा सॉरी, कोशिश करेंगे, वादा नहीं है। सुनिए वो हॉस्पिटल का नाम हाशवानी है, हाशवानी बिल्कुल आपने सही बता दिया सलीम मेहमान साहब, अब मैंने सही पढ़ लिया। हमारी चाची ने बताया था हॉस्पिटल, आसिफ अली को अपने भांजे को लेके जाओ हाशवानी ली मार्केट में, यानी कि समझ रहे हैं ना, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, 100% अच्छे डॉक्टर्स होंगे। तो ये तुम्हारा काम है आसिफ अली, भांजे को ले जाना। अच्छा जी एसगुल कह रही है निकाह मुबारक मुझको और चाहत, आप उस दिन क्या कह रही थी, सलाम देती हूँ इस बारे में, ये आपस में बातें कर रही हैं। फ्राइडे टू फ्राइडे मैसेज किया करूंगा साहेबजादा, ये तो गलत बात है यार, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, ये बताओ है कि ना। ओके इनामुल हक हमारे शहजादे आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान कैसे हैं, आंटी को, चाची को, संजीदा को, समी भाई को, सलीम भाई को और सब सुनने वालों को सलाम। भाई जान हमारे मनोड़े के सितारे को मनोड़े
धनुड़े के सितारे को शहीद कर दिया गया, आपने न्यूज में सुना होगा। अच्छा, ये इस न्यूज के बारे में हमें पता नहीं है, इनाम भाई इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस पर तफसील से बात करेंगे। और आशवानी कायद आजम के नजर के पास बेस्ट है और आया हॉस्पिटल ली मार्केट में है, फ्री है। अच्छा, चाची की कुछ जो है ना नसीहतें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और नौरीन भैना क्या कह रही है, मैं किसी को उल्टा जवाब नहीं देती क्योंकि मेरे सीधे जवाब ही लोगों को उल्टे लगते हैं। अच्छा, ये मैं सीरियस पढ़ रहा था, ये मजाइया निकला। और जो सीरियस भेजे थे वो मैंने मजाइया अंदाज में पढ़ ली। माजरा चाहते हैं भैना, माजरा था। मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं, नदीम भाई दरिया तो नहीं, सवाल का जवाब दरिया का भी मुंह होता है, ये भी रिवर भी किसी ने कहा था, और दूसरे से मिल जाता है लेकिन बोलता नहीं। रिवर का कहां मुंह होता है भाई, दरिया का मुंह नहीं होता, ये तो मैं 100% श्योर। लेकिन आपने पहले बोतल बताया था मिर्जा साहब, वो मैंने बता दिया। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक की जानिब जाएंगे और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारे प्यारे से अब्बास भाई की वाइफ जो हैं वो सुन रही हैं, तो अब्बास भाई की जानिब से उनकी वाइफ को डेडिकेट करेंगे। और इसके साथ साथ नवीद भाई जो हैं वो भी सुन रहे हैं, उनकी जानिब से भी डेडिकेट करेंगे। नवीद भाई ने भी कोई नाम वाम लिखा था मेरा ख्याल है, कहां गया, मैसेज ढूंढ रहा हूं नवीद भाई का, लेकिन नवीद भाई का मैसेज ही नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल में हमें गाना चला देना चाहिए। नहीं, मिल गया भाई, छोटा भाई सुन रहा हूँ नदीम भाई। अच्छा बट ठीक है, इन्होंने नाम कोई नहीं लिखा है, तो नवीद भाई को भी डेडिकेट करेंगे और उसके साथ साथ हम ये स्पेशली अब्बास भाई की वाइफ को डेडिकेट

0: जवाब सवाल को चेंज किया जाए। तो बिल्कुल उसी तरह की जो है पहेली है, पहले तो मुंह है पर बोलता नहीं, लेकिन अब है खुद खाता नहीं सबको खिलाता है। देखे ना आपने, देखे बिल्कुल मिलते जुलते ले आया हूँ पहेलियां, ठीक है ना, खुद खाता नहीं सबको खिलाता है भाई, कितना अच्छा इंसान है। मैं अपनी तरफ से ही बोल रहा हूँ, पहली वही है, खुद खाता नहीं सबको खिलाता है, बताएं क्या। और जनाब आसिफ कह रहे हैं, सुने हूं आपका, चाची जान का और सलीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हमारा शुक्रिया तो अदा कर दिया है, लेकिन शुक्रिया उस वक्त अदा करना जब तुम उसको लेकर जाओगे, भांजे को तुम लेकर जाओगे, ये कार्य खैर खुद करो, सवाब होगा। चाहत कह रही है, एसगुल मैंने अच्छा भाई ठीक है, आपस में जो है ना बातें हो जा रही है चाहत की और एसगुल की। अनीस साहब कह रहे हैं, सलाम मैंने भाई और तमाम लिसनर्स को भी सलाम, हम भी हाजिर हो गए। जीते रहो मुस्कुराते रहो, हाजिरी लग गई है जनाब, प्रेजेंट प्रेजेंट हो चुका है, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ तो हमारे अनीस भाई को हम गाना भी डेडिकेट करेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन अभी तो फिलहाल आपके मैसेजेस ही हो जाए। और मिर्जा साहब कहते हैं, जियो नदीम लाला ढोला तेरी अखियां दिसो है, क्या लाजवाब, वाह वाह। अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, अरे भाई सुनाएंगे आपको, अभी सुनाएंगे, कुछ ही देर में सुनाएंगे, अलीमुद्दीन साहब आपका गाना चलेगा, डोंट वरी। और हमारे प्यारे से अब्बास भाई को बहुत पसंद आया है ट्रैक, थैंक यू भी बोला है, लेकिन आप ये बताए हैं कि आपकी वाइफ को पसंद आया गाना या नहीं आया, आपकी जानिब से उनको डेडिकेट किया गया था, कह रहे हैं हाँ जी आया पसंद, ओके ठीक है। वैसे जितने हाजिर जवाब आप है ना, इतनी ज्यादातर खवातीन होती हैं, मोश्क आ गई है बेर, यानी गाने बहुत अच्छे चला रहे हैं, जीती रहे मुस्कुराती रहे। अच्छा भाई अभी हम जाएंगे एक बहुत प्यारी सी विशिंग की जानेब, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जिसकी बर्थडे है आज के दिन, यानी कि 6 तारीख हो चुकी है, तारीख बदल चुकी है, जिसका नाम है खुशी, और जो है हमारे यूसुफ भाई पापोश वाले, उनके घर की खुशी और हम सबकी खुशी, तो उनको हम बर्थडे विश करेंगे FM 100 की जानेब से।
1: हैप्पी बर्थडे ए प्यारी सी खुशी को, सालगिरह बहुत मुबारक, सेलिब्रेशन ऑल नाइट लॉन्ग, यूसुफ भाई की जानिब से, हमारी जानिब से, FM 100 की जानिब से।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सुने। म्यूजिक ट्विस्टर में कहूंगा आपको खुशामदीद। अच्छा जनाब, हमने सवाल किया था, मुंह है बोलता नहीं, बताएं क्या? तो आप लोगों ने उसका जवाब दिया और तकरीबन सबके दुरुस्त जवाब थे अपनी अपनी जगह पर। और चाची ने

उनकी अम्मी की जान है, अब्बू की जान है, सालगिरह मुबारक। तो भाई हमारी प्यारी सी खुशी को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये था खुशी के लिए सेलिब्रेशन। उम्मीद करते हैं कि खुशी को अच्छा लगा होगा और ट्रैक हम कल भी डेडिकेट करेंगे, आज भी करेंगे, मगर अभी तो फिलहाल हमने जिस डेडिकेशन की जानिब जाना है वो डेडिकेशन है जनाब हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब की। तो अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब की जानिब से ये ट्रैक आप सबको डेडिकेट करेंगे और उसके साथ साथ हमारी सायरा मेमन बहन और उसके साथ हमारे इरफान मेमन भाई और मेमन सिस्टर्स तमाम को भी डेडिकेट करेंगे। और अरूसा मेमन के लिए मेरी प्यारी सी बहन के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। एलो फड़ो।

वेलकम बैक। बोलो बोलो तुमने क्या देखा? मैं नहीं बताऊंगा। ब्यूटीफुल ट्रैक था जनाब और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मैसेजेस 3636 पर आ रहे हैं। चाहत कह रही है भाई आपने मेरे मैसेज शामिल किए। भाई आप दोनों की बातें चल रही हैं। एस गुल आपको मैसेज कर रही है और आप उसको कर रही हैं। मैं बीच में कबूतर बना हुआ हूँ क्यों? यानी ये समझ रही है ना आप? वैसे आपके जो शो के हवाले से मैसेज आ रहे हैं चाहत हम सब पढ़ रहे हैं। राणा साहब आ गए ना भाई, एम इमरान राणा। यार राणा साहब के हवाले से इतनी रील्स आती हैं तो हंसी आ जाती है। माजरत। एम इमरान राणा हमारे प्यारे से भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस शो, बेहतरीन परफॉर्मेंस सर जी, तमाम लिसनर्स को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। फरमाइश कर दी है, हाय हाय, सलामत रहे, खुश रहे राणा साहब, कोशिश करेंगे राणा साहब। और राणा साहब अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो सॉरी। मुश्क कहती है, कुछ कहती है, कहती है मैं पहले तेज तेज काम किया करती थी, फिर मेरी अम्मी ने नाम मेरा बिजली रख दिया, अब मैं भी एक घंटा काम करती हूँ और 3 घंटे आराम। क्या बात है बिजली। ताल्लुकात निभाने के लिए, ये मैं मुश्क के ही मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, ताल्लुकात निभाने के लिए वादों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे फिर दोस्ती का हो, खून का हो, या एहसास का, चाहे मोहब्बत का। वाला वाला वा। ये बात अच्छी लग दी भाई, सीरियस सीरियस इसके मैसेज का पता नहीं होता कि शुरू जो है वो बड़ा सीरियस होगा मैसेज, इख्तिताम जो है वो मिजाह पर होगा, तो इसलिए बड़ा रुक रुक के पढ़ना पड़ता है मुश्क जीक दे मैसेजेस। और जनाब नौरीन बहना क्या कहती हैं? क्या बात है भाई, सही बता दिया नौरीन बहना ने। नन्नी सी प्यारी सी खुशी को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक उसे हमेशा खुश सेहतमंद और अपनी रहमतों के साए में रखे, उसकी हर मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे, आमीन सुम आमीन। नन्नी भाई आखिरी लम्हात में लाइव आए ना, आए लजी ना करें, सिर्फ आधा घंटा रह गया, मेरी बहन पहले अगर फरमाइश कर देती आप तो कम अज कम, यानी कि समझ रही है ना, 15-20 मिनट के लिए क्या है। तो जनाब और आगे बढ़ते हैं, चलें कल सही, कल हम लाइव आएंगे। नदीम भाई ओके, चाची बिल्कुल दुरुस्त बता दिया आपने, बिल्कुल दुरुस्त बताया 100%। और आबाद भाई दुआएं दिए जा रहे हैं, खुशी का इजहार किए जा रहे हैं, और उन्होंने जनाब खुशी को बहुत सारी दुआएं दी हैं दिल से और सलामती की, और उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे टू खुशी, ये अब्बास भाई ने कहा है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है, एक ट्रैक बहुत स्पेशल मैं आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूं, और ये ट्रैक जो है स्पेशल गुफरान भाई की जानिब से आप सबके लिए है, एलो फड़ो।

वेलकम बैक, कहेंगे भाई क्या बात है बलोची गाना हमारे प्यारे से जो है गुफरान भाई ने आप सबको डेडिकेट किया है, लेकिन एक गाना मैं भी डेडिकेट करना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए थे यार, मूड भी चेंज कर रहा हूँ आपका, ये गाना सुने हुए मुझे इनवी ग्लासियस। जितने भी इंग्लिश सॉन्ग लवर्स हैं उन सबको मेरी जानिब से हेलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो ब्यूटीफुल ट्रैक आपने सुने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे और वाह भाई वाह हमारी प्यारी सी बहन मुल्तान वाली सनम जो है वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। अभी हम कुछ ही देर में आपको इसका जवाब बताने वाले हैं और सॉरी नदीम भाई वैसे चाहत अरे ये आप लोगों की बातें एक दूसरे से जो चल रही है ना। अच्छा मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, चाहत को भी ये बोलूंगा और एस गुल को भी, बस आप आपस में बातें करती रहेंगी। शो के हवाले से जो बात करेंगी वो मैसेज में आपके पढ़ूंगा, यानी कि समझ रही है ना आप। और राणा साहब जरा तुसी गाना किया ना वो गाना हम चलाएंगे कल, क्योंकि वो फिल्मी गाना है तो फिल्मी गाना हम कल के शो में चला सकते हैं। तो कल आप आए या ना आए, सुने या ना सुने, तो हम मोहम्मद इमरान राणा को ट्रैक जरूर डेडिकेट कर देंगे अपनी जानिब से। और आसिफ कह रहे हैं लिटिल क्वीन खुशी को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सनम का जवाब तो दुरुस्त आ ही गया है और चाची द ग्रेट, चाची की आपकी वजह से हमने दो दो सवाल किए और चाची ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। अच्छा वक्त क्योंकि बड़ा महदूद सा है तो लिहाजा कुछ डेडिकेशंस यानी कि समझ रहे हैं ना बनती हैं। तो अभी हम एक ट्रैक की जानिब चलते हैं, अपनी पसंद के चलाऊं या तुम्हारी पसंद के। अच्छा सज्जाद अली का एक ट्रैक हम चला रहे हैं और ये मतलब मैं मेरी कोशिश है काफी दिनों से कि सज्जाद भाई के वो वाले ट्रैक चलाए जाएं जो कम सुने गए हैं, ढूंढ रहा हूं मैं। तो जरा ये वाला गाना सुनिए सज्जाद अली का और ये ट्रैक जो है हम डेडिकेट करेंगे अजरा शब्बीर को हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से, अनीस भाई को मैं अपनी जानिब से, राणा साहब तो अनवी और सनम मेरी प्यारी सी बहन मुल्तान वाली और सनम कराची वाली दोनों को भी डेडिकेट करेंगे। एलो फड़ो

ओ वेलकम बैक कहेंगे जनाब, गाना कैसा लगा आपको ये सज्जाद भाई का? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा ये गाना। मैं भी आपको थोड़ा सा इसी वजह से सुना रहा हूँ कि अभी इतना ही सुन लीजिए, अगर पसंद आया तो दोबारा फरमाइश कीजिएगा। लेकिन सज्जाद अली का क्योंकि मैंने एक और गाना चलाना है तो लिहाजा इसको अभी यहीं पर, यानी कि समझ रहे हैं ना अब्बास भाई की कहने पे ने गाने बड़े अच्छे लगते मैंने। अच्छा भाई, उन्होंने कहा खुशी को एक गाना डेडिकेट कर दीजिए। कर देंगे जनाब, कर देंगे खुशी को, अभी हमने इतना अच्छा विश किया। अच्छा यूसुफ भाई, आपने कुछ जवाब शवाब नहीं देता लोग की, आप हमारी प्यारी सी खुशी को जो है भरपूर तरीके से विश कर रहे हैं, तो कुछ होना चाहिए आपकी जानिब से भी। अबाजी बाबा क्या सॉन्ग है, हमको तो लगता है ये गुफरान भाई ने खुद गाया है। और हमने भी किसी को सॉन्ग विश करने का बोला था, सलीम मेमन भाई कह रहे हैं। सलीम भाई आपने क्या किसको बोला था, जल्दी से बता दो, मैं फौरन चला दूंगा। जल्दी से बता दे, जल्दी से, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है। अच्छा जनाब, अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए। चर्चा क्या हो जाए जनाब, कि हमने सवाल आपसे जो किया है उसका जवाब जो है वो आपको बता दें। और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया सबने। ठीक है जी, सवाल मैंने कहा खुद खाता नहीं सबको खिलाता है, बताएं क्या। तो जनाब इसका जवाब जो है हमारी चाची ने भी दिया, नौरीन मैना ने भी दिया, सनम मैना ने भी दिया, मुल्तान वाली सनम मैना। तो जिनने भी लोगों ने इसका जवाब दिया, दुरुस्त जवाब दिया, क्योंकि पहेली बहुत ही आसान थी, चम्मच प्लेट खुद नहीं खाते हमें खिलाते हैं। तो ये थी सूरत हाल, ये थे आज के सवाल, बहुत लाइट से सवाल किए और लाइट से जो है वो आपके जवाब भी आते रहे। अच्छा मैं चाह रहा था जैसा वैसा ही हो गया, यानी कि मूड जो है इंसान का लाइट रहना चाहिए। अच्छा बात आ जाती है थोड़ी सी हल्की फुल्की सी चर्चा, उसके बाद गाने की जानिब जाएंगे, और वो ये है कि टेंशन के हवाले से बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। सारे बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, अरे हाँ हमारी प्यारी सी बहन जो है उन्होंने कहा था, जिन्होंने टेंशन के हवाले से कहा था कि बड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं, हमारी प्यारी सी बहन इरम यूनस ने, तो उनको भी हम ट्रैक डेडिकेट करेंगे अभी। तो ये टेंशन जो है ना ये जिंदगी से जाएंगी नहीं, ये जहन में रखिएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई हमारी जिंदगी में टेंशन ही, जो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, वो भी टेंशन में, ठीक है ना। और आपके पास मिसालें हैं, थोड़ा सा सोचिए कि अरबपति पाकिस्तान में, अरबपति करोड़पति खरबपति मिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स के मालिकान जो हैं, आपको ये भी पता होगा कि वो किस टेंशन में। तो टेंशन जो है वो इंसान के साथ जुड़ी हुई है, जिसके पास जेब में कख नहीं है वो भी टेंशन में है, और जिसको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है वो भी टेंशन में है। तो लिहाजा ये टेंशन लेना जो है ना ये छोड़ते हैं। अब पूछे कैसे, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जिस इंसान को अल्लाह तवक्कल होता है, सिर्फ उस ज़ाते पाक के ऊपर पूरा भरोसा ईमान, तो यकीन मानिए कि टेंशन, ये नहीं कहूंगा कि उसको नहीं होती, होती तो होगी, मगर उसका तवक्कल इतना जबरदस्त होता है कि वो टेंशन उसको बीमारियां नहीं लगाती। हम अक्सर देखते हैं कि ये टेंशन की वजह से बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जाहिर है जिस्म के अज़ा पर जब जोर पड़ेगा, दबाव आएगा, तो टेंशन में तो आएंगे। और टेंशन की वजह से गुफरान भाई ज्यादातर कौन सी ऐसी बीमारी है जो टेंशन की वजह से ज्यादा है और आजकल बहुत ज्यादा है? पपीता, बीपी, ब्लड प्रेशर। अच्छा ब्लड प्रेशर इन्होंने बताया है। खैर आपको मैं बता दूं कि स्पेशली टेंशन लेने की वजह से ना, ज्यादा ज्यादा टेंशन लेने की वजह से लोगों को शुगर भी होती है। शुगर जो है वो कुछ तो इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड से मुराद ये है कि जद्दी पुश्ती सिलसिला चल रहा है जी, कि दादा को भी शुगर थी तो उसके बाद बेटे को भी हुई तो फिर पोते को भी हो गई, तो ये सिलसिला भी होता है शुगर का, ये तो है ही है। लेकिन इसके अलावा भी जिन लोगों को शुगर हो रही है तो उनका सिलसिलाकार कुछ ये है गुफरान भाई कि टेंशन लेने की वजह। तो लिहाजा टेंशन जरा कम लिया करें, टेंशन दिया करें, वैसे देनी भी नहीं चाहिए टेंशन। तो वैसे तो जो शादीशुदा लोग हैं उन्होंने घर पे बिठाई हुई है टेंशन
अच्छा भाई फौरन से पेशतर हम जाएंगे हमारे प्यारे से शहजादे कहां गया। सबसे बड़ी हमसे गलती ये हो गई सलीम भाई, हमारे सलीम भाई, सलीम मेमन भाई हमारे जहन से निकल गया जबकि निकलना नहीं चाहिए था। तो भाई हमारे हुजैफा भाई जो हैं सलीम भाई के बहुत ही प्यारे से दोस्त हुजैफा आसिफ, उनकी भी बर्थडे है तो उनको बर्थडे भी विश करेंगे और नालो नाल गाना भी डेडिकेट करेंगे। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले तो उनको हम करेंगे बर्थडे विश। हैप्पी बर्थडे हुजैफा आसिफ साहब, सलीम मेमन की जानिब से, FM 100 की जानिब से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जीते रहो, मुस्कुराते रहो, शाद रहो, आबाद रहो अपने खर्चे पे। हैप्पी बर्थडे जनाब, और हैप्पी बर्थडे के साथ ही साथ हम जो है गाना भी डेडिकेट करेंगे। वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कुछ फुल टाइम जो है ना ऐसा गाना लगाया जाए जो के हल्ले गुल्ले वाला हो, मगर ये गाने हैं बहुत बड़े बड़े। छोटा जी गाना मैं देख रहा हूँ कि छोटा जी गाना मिल जाए। चले जनाब, पूरा गाना नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा चला देंगे, कोई गाल नहीं। ये हमारे हुजैफा भाई आपके लिए।

0: वेलकम बैक गैंग में लॉन्ग लॉन्ग नकदा वो तो लक पतला हाय लजी जैसा भाई कैसा लगा आपको ट्रैक और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है जनाब और एक हमारे बहुत ही हर दिल अजीज खुशकिस्मत अपने आप को गाऊंगा भाई इरफान कामिल भाई जो हैं वो इस वक्त सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इरफान कामिल को कौन नहीं जानता कामिल भाई को। टीवी में मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इनके प्रोग्राम्स देखते होंगे बस इनके पास टाइम नहीं है आजकल। कह रहे थे नदीम भाई आऊंगा तो इरफान भाई आप कब आ रहे हैं जरा बताएं किसकी शादी कब होगी मेरे आदमी शादी की कितनी लगी रहे यही पूछ रही होते हैं ज्यादा पूछ रही भी होती है और रहे भी होते हैं। जी जी जी जी
1: अब क्या फायदा जिसकी लगी रही नहीं थी
0: लहर जी हमारे प्यारे से इरफान कामिल भाई के दोस्त जो हैं उमेर साहब और जोहेब भाई जो हैं वो भी सुन रहे हैं तो अभी हमने आपसे चाहनी है इजाजत भी और जाते जाते हम इन दोनों प्यारे से दोस्तों को कामिल भाई के जो दोस्त हैं उमेर साहब और जोएब साहब इनको एक ट्रैक भी डेडिकेट करेंगे उनकी जानिब से। तो मुझे दीजिए इजाजत अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी जनाब कल म्यूजिक ट्विस्टर में ही रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। जाते जाते कामिल भाई की जानिब से उमेर भाई आपके लिए और जोएब भाई आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एल्लो फड़ो।

यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। और जनाब हमें ज्वाइन किया है तानिया हसन में, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और कहते सलाम शुभ साहब, वाले सलाम, आपकी तबीयत कैसी है, आपको सेहत दी, और यूं खो गए तेरे प्यार में। आज के प्रोग्राम को मैंने टाइटल दिया, वो इत्तेफाक से आज के प्रोग्राम का टाइटल मैंने यही रखा, आपने देखा होगा मैं फलारी के ऊपर जो मैंने ऊपर कोने में जो वो लिखा, वो भी यही वजह कि आज के प्रोग्राम का टाइटल यही था, यूं खो गए तेरे प्यार में। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच जी, जजाकल्ला, खुश रहें, बस तबीयत बेहतर है अल्लाह का अलहमदुल्ला। और आपको बताया कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बस वैसे ही कुछ बेहतर हो फौरन निकल के भागूं, क्योंकि घर में सुकून नहीं मिलता, फिर घर से बस दिल चाहता कि जाके आप सबसे मुलाकात जरूरी है। इसके साथ साथ हमें समीर ब्रोज में ज्वाइन कर चुके, कहते शोभ साहब क्या बात है, आज के ट्रैक तो बड़े खूबसूरत है भाई, मुजीब आलम की आवाज में गाने तो बड़े खूबसूरत गाने आप सुनवा रहे हैं। चले भाई थैंक यू समीर ब्रोज, आपको म्यूजिक पसंद आ रहा है इंशाल्लाह, और बाकी गाने भी आपको पसंद आएंगे उम्मीद है। बाकी तो कहते हैं पसंद अपनी अपनी, वैसे ही अपना अपना, ये तो मेरी बस पसंद पर है जो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। अब ये आपको पसंद आते या नहीं आते ये तो फिर कोई बात है कि अपनी अपनी पसंद हो जाती है। हर बार उम्मीद तो ये करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा ये म्यूजिक, आज का म्यूजिक लाजमी पसंद आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये म्यूजिक आपको पसंद ना आए, नामुमकिन सी बात है। क्यों कि अब हम शामिल कर रहे हैं एक और क्लासिक सब्जेक्ट, कहते नगमे शायरी जो है वो पैगाम रसाने में भी शायरी बड़ी बहुत काम आती है ना, पैगाम भेजना, पैगाम देना, अपनी फीलिंग को पहुंचाना, ये तमाम चीजें जो है ना वो ये भी शायरी में ये चीजें भी बड़ी काम आती हैं। और समीम रोज कहते हैं आपको भी सलाम जी, वालेकुम सलाम जी, मुझे भी सलाम, थैंक यू वेरी मच। तो ये क्योंकि ये म्यूजिक और शायरी, खासतौर पर शायरी जो है, ये आपको पता है कि ये शायर की ऐसा साथ, शायर की फीलिंग होती है जो किसी न किसी से कहीं ना कहीं मैच हो रही होती है और लोग उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए तो अब शामिल करते हुए ये खूबसूरत ट्रैक, जरा गौर कीजिएगा शायरी पर।

जी जनाब, तुमने वादा किया था आने का, अपना वादा निभाओ, आ जाओ, अपना वादा निभाओ, आ जाओ। और जनाब उमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी, कहती हैं जबरदस्त जी, मेरे फेवरेट मुजीब आलम जी, लेजेंड रॉक सुपरस्टार हैं जी, और क्या बात है, इनकी इनके गानों की किंग है ये, दिल में उतरती हुई आवाज मदहोश करने वाली पोइट्री। और वाह शोभी जी, वाह बहुत खूब, थैंक यू भाई, थैंक यू, खुश रहें। और उसके बाद जनाब तानिया हसन कहती बहुत खूब जी, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है इन मुजीब आलम साहब के, थैंक यू भाई तानिया हसन, थैंक यू, आपको पसंद आ रहे, बहुत शुक्रिया। वाह शोभी साहब बहुत खूब जी, हमसे बदल गए, ये गाना जो है मेहदी हसन खान साहब की आवाज में, मुजीब आलम की आवाज में नहीं है, और इसलिए जो है ये गाना तो मैं शामिल नहीं कर सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मुजीब आलम की आवाज शामिल कर रहा हूं आज, सिर्फ और सिर्फ मुजीब आलम साहब। और मुजीब आलम साहब का एक और गाना, बहुत सारे क्लासिक सॉन्ग, उन्हीं में से एक गाना और, आप सबकी नजर माला और मुजीब आलम की आवाज़।

0: watch live entertainment show with Ajmal Khan Jovi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan.
1: माला और मुजीब आलम की आवाज। शुजात मिर्जा कहते हैं गुलजार खान जी, बिल्कुल आपने उस्ताद जी दुरुस्त बात की। अभी ये की बात कर लें, कितने बेशुमार 90s की बात कर लें तो कितने बेशुमार पाकिस्तान सॉन्ग जो भारत ने कॉपी किए, जिनमें रद्दबदल के बाद उनसे ज्यादा ओरिजिनल जो शामिल किए फिल्मों में वो ज्यादा हिट हुआ। बिल्कुल सही बात, हकीकत है ये, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे म्यूजिक, हमारे लोग गाने वाले, हमारे बनाने वाले म्यूजिक, अच्छा बात यह कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास जो लोग थे वो लोग भी वहीं से आए थे, क्योंकि शुरू में पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग थे वो इंडिया से यहाँ वो शिफ्ट हुए यहाँ पर आए। तो बात ये नहीं, बात यह कि वहां भी बहुत से लोग थे, मगर बात यह कि बस वो हर शख्स की अपनी एक कहते हैं कि वो बस मेंटेलिटी होती है, अपनी एक तख्लीक होती है। वो एक सबका, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग है। एक वालदेन की कितनी औलादें होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका मूड अलग होगा, बिल्कुल कोई एक नहीं, कोई सब एक जैसे होंगे, कोई नहीं, सब अलग होंगे, सबकी सोच अलग होगी, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, कोई शरीफ, कोई बदमाश, कोई सियासतदान निकल आता है, कोई ये बन जाता है, कुछ बन, तो ये सबकी सोच अलग होती है। तो इसीलिए बिल्कुल यही बात यहाँ भी है। खैर जी, वक्त 2:03 हो चुके और मैं आप सबको खुश आमदीद कहूंगा। और जनाब, एक सभा ने हमें मैसेज किया है, SMS किया है, सभा फ्रॉम कराची, RJ अजमल शोभी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। मुजीब आलम मेरे फेवरेट सिंगर हैं, शो बहुत अच्छा है, थैंक्स। थैंक यू सभा, थैंक यू, जजाकल्ला, खुश रहें, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और उसके बाद भी अस्सलाम वालेकुम अजमल शोभी भाई, यूसुफ पापोश से और तमाम ये सुनने वालों को सलाम, FM मंडित की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची रूसा गुलबानों और तमाम ही डॉक्टर्स को, इमरान भाई, खिताब गुलदारा और फरान भाई को सलाम भी। चलें जी, थैंक यू, आपका सलाम सब तक पहुंचा दिए, बिल्कुल सब तक इंशाल्लाह ताला। खिताब लाला, असल में वो कॉल करते थे, खिताब लाला जो है वो बहुत अच्छे से, खिताब लाला को मैसेज नहीं आया, कोई उनसे बात नहीं हो सकी हमारी, अल्लाह ताला उनको खैर वापस रखे। खिताब लाला के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी, वो खुश रहें, सलामत रहें, यकीन सुनते तो होंगे, तो बहुत सारी दुआएं खिताब लाला आपके लिए, खुश रहें, सलामत रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अब यूं करते हैं कि आते हैं एक और खूबसूरत ट्रैक की जानिब और शामिल करते हैं एक और ट्रैक, क्योंकि आवाज वही मुझे वाला में, और इस वक्त जो मैं शामिल कर रहा हूं ये गाना जो है, ये जनाब है मुजीब आलम साहब और माला बेगम की आवाज।

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Shobhi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं और जनाब तानिया हसन क्या कहती जी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा मेरी फेवरेट की बात की जाए तो मैं मुजीब आलम की सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। सारे गाने, एक तो ये कि इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक रहा और फिर ये सारे गाने तकरीबन, क्योंकि जब ये फंक्शन में जाते थे होते थे मौजूद होते थे तो ये लोग इनसे फरमाइश, इनके अपने फिल्मी गानों की फरमाइश करते थे, दूसरे को दूसरों के गाने ये नहीं गाते थे, अपनी ये फिल्म अपनी ही फिल्मों के गाने जो लोग इनसे फरमाइश करते वही ज्यादा, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, तो लोग इनसे इन्हीं के गानों की फरमाइश करते थे और ये अपने ही गाने तकरीबन मैंने तकरीबन ये समझ लिया कि इन्हीं के गानों को मैंने इन सब तमाम गानों को सुना हुआ, इनसे मैंने लाइव सुना हुआ। और जनाब टाइम होया है 2:00 थे, कितने 15 मिनट हो ते जनाब यूट्यूब पर चलिए उठे की कहते ने शुजात मिर्जा कहते ने यूं खो गए तेरे प्यार में हम, गला भी कुछ सही नहीं है असल में, मौसम भी जैसा होता है बस, मगर अब मजबूर है फुल्ला रह भी नहीं सकते तो ये भी बड़ा मसला है, तो इसीलिए बस कोशिश करता हूँ, मगर फिर आवाज जरा आपको तो सही नहीं, आवाज भी सही, गला सही नहीं है, खांसी नजला और फिर अभी ये छोटा सा हादसा हुआ इस वजह से थोड़ा सा नहीं कर सका।

पूछो ये मिलके बिछड़ना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, मिले हो मगर अजनबी बन

पूछे मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। फिल्म शमा और परवाना, अब पिक्चराइज वही नदीम साहब पर।

कितनी तेजी से वक्त गुजर गया और बस 7 मिनट बाकी हैं। और जनाब शुजात मिर्जा क्या कहते हैं, मैं इसीलिए आपको उस्ताद कहता हूँ, आप रेडियो की दुनिया के उस्ताद हैं, बेहतरीन ब्रॉडकास्टर हैं, आपकी इज्जत एहतराम हमारे दिलों में, आपके लिए दिल से दुआएं, बहुत सलामत रहें, थैंक यू जजाकल्ला, आपकी मोहब्बत है। मैं उस्ताद तो नहीं हूँ भाई, मैं बिल्कुल, मैं तो खुद शागिर्द भी नहीं हूँ, मैं तो तिफल मकतब हूँ और अभी तक सीख रहा हूँ, जहाँ मैं मेरे सीनियर मुझे मिलते हैं, मैं उनके घुटनों को छूता हूँ मैं और उनसे सीखने की, उनसे कुछ समझने की कोशिश करता हूँ मैं कभी भी उस्ताद नहीं हूँ मैं। और उसके बाद फैजान खोकर क्या कहते हैं कि हाय क्या बात है सर, चाय एक कप में उसको आधा आधा कर लूंगा सर, एक सिप मेरी एक सिप आपकी, क्या बात है, गुड भाई, सलामत रहो, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, फैजान खुश रहो, सलामत रहो। और अब जो करते हैं कि शामिल करते हैं एक गाना, ये वाला, और ये गाना आप तमाम ही सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, मेरी तरफ से दुआया कलाम आप सबके नाम।

तानिया हसन कहती है आई लाइक इट वेरी नाइस सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड नाइस वन वाई नॉट बिल्कुल हकीकत इसमें कोई शक नहीं ओल्ड इज गोल्ड इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग क्यों कहते हैं इसीलिए कि वाकई ये पुराना म्यूजिक है ही ओल्ड गोल्ड और अब इसके साथ ही मैं चाहूंगा इजाजत आज के खूबसूरत से ट्रैक के साथ शमा परवाना के आखिरी ट्रैक मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा मैं प्रोग्राम अभी छोड़ के जा रहा हूँ शहर छोड़ के नहीं जा रहा बेफिक्र है इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात हो किसी दिन रही तो कोई बात ना अगवा गुजरे उसके लिए माफी का तलबगार हूँ उम्मीद है कि माफ फरमाएंगे कभी कभी गुफ्तगू में कुछ इधर उधर हो जाता है और आज का म्यूजिक आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स अपनी राय जरूर दीजिएगा चाहे तो आप फेसबुक पर मैसेंजर पर दे सकते हैं और अगर प्रोग्राम आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह के बारे में पाकिस्तान जिंदाबाद

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिबिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.